0: श्रोताओं, इस समय सवेरे के 5:30 हुए हैं। अनमोल विचार।
1: सच्ची पहचान हमारे नाम, रूप या पद से नहीं, बल्कि हमारे विचारों, व्यवहार और कर्मों से बनती है। जीवन में ऐसा व्यक्तित्व विकास करें कि लोग आपको आपकी अच्छाइयों, ईमानदारी और संवेदनशीलता के लिए याद रखें। यही पहचान सबसे स्थायी और सम्मानजनक होती है। पहचान चेहरे से नहीं, चरित्र से बनती है।
0: ये था आज का अनमोल विचार। और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए मातृ वंदना।

0: अल्ताफ राजा और नुसरत वसीम के गायन नाद के साथ भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 5:56 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आज की हमारी चर्चा का विषय है मछलियों की उन्नत किस्में और पालन। हमारे द्वीप समूह में मछली पालन की संभावनाएं तो अच्छी हैं, परंतु

0: वंदना अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 5:56 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आज की हमारी चर्चा का विषय है मछलियों की उन्नत किस्में और पालन। हमारे द्वीप समूह में मछली पालन की संभावनाएं तो अच्छी हैं, परंतु फिर भी मछली पालन की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इसका पहला कारण तो यह है कि किसान भाई मछली पालन के आधुनिक तरीकों से ठीक तरह से अवगत नहीं है। दूसरी बात, किसानों के पास जो तालाब होते हैं उसमें वो बिना सोचे समझे मछलियों का संचय कर लेते हैं, यानी मछलियों के बीज अधिक संख्या में छोड़ देते हैं, जिससे मछलियों की बढ़ोतरी ठीक प्रकार से नहीं होती। कभी कभी किसान भाई मछलियों के बीज कम संख्या में छोड़ते हैं, जिससे तालाबों का समुचित प्रयोग नहीं हो पाता। हमारे द्वीपों में मछलियों की 3 उन्नत प्रजातियां उपलब्ध हैं। इनका पालन किसान भाई अपने तालाबों में कर रहे हैं। ये उन्नत किस्में हैं कतला, रोहू और मृगाल। इन्हें इंडियन मेजर कार्प के नाम से जाना जाता है। इनके अलावा 3 विदेशी मछलियां भी हैं जो कि बहुत तेजी से बढ़ती हैं, तथा इंडियन मेजर कार्प के साथ इनका भी पालन किया जा सकता है। उन्नत किस्मों के विदेशी मछलियों के नाम हैं सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प। किसान भाइयों, जिस प्रकार से हम फसलों के लिए सही जमीन का चुनाव करते हैं, ठीक उसी प्रकार तालाब बनाने के लिए भी सही जगह का चुनाव करना चाहिए। इसके लिए किसानों को जगह का चुनाव करते समय कुछ मुख्य बातों पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि निर्माण वाले स्थान की मिट्टी अधिक बलुई या कंकरीली ना हो। वो स्थान ऐसी जगह पर ना हो जहां पर कि निर्माण का खर्च ज्यादा हो, तालाब में बाढ़ आने का खतरा ना हो। तालाब बनाने से पहले उस जगह की मिट्टी की जांच जरूर करवा लें, तथा तालाबों का तल भी समतल होना चाहिए। तालाब निर्माण के बाद इसमें खाद के प्रयोग से कम 10 दिन पहले चूने की मात्रा, जो कि करीब करीब 200 से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है, उसका प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद तालाबों में कार्बनिक व अकार्बनिक खादों का प्रयोग मछली बीज छोड़ने से 10 से 15 दिन पहले व बाद में 3 या 4 किश्तों में करनी चाहिए, जिसकी मात्रा कुछ इस प्रकार से होगी। कच्चा गोबर 10,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, अमोनियम सल्फेट और सिंगल सुपर फास्फेट 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष। यदि पानी हरी या नीली होने लगे तो तालाबों में उर्वरकों का प्रयोग बंद कर दें। यदि तालाब पुरानी है तो उसमें से उर्वरक के प्रयोग से पहले सभी अनचाही मछलियों को निकाल देना चाहिए, और यदि संभव हो तो पानी भी तालाब से निकाल देनी चाहिए। जब तालाब पूरी तरह से तैयार हो जाए तो उसमें उन्नत किस्म की मछलियों के बीजों का संग्रहण सीमित संख्या में करना चाहिए। जितने भी पालने योग्य मछलियां हैं वे तालाबों के अलग अलग स्तर का उपयोग अपने भोजन के लिए करते हैं। उनमें भोजन के लिए कोई भाग दौड़ भी नहीं होती। जैसे कि कतला मछली सिर्फ तालाब की ऊपरी सतह का, रोहू मध्य स्तर का, तथा मृगाल तालाब के निचली सतह का प्रयोग करते हैं।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एग्री टिप्स। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: करेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of

समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी आज ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप और दोपहर 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के

होगी। एमवी बाराटांग सुराजदीप की यात्रा पर आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी आज ही 2 बजे सुराजदीप से शहीद द्वीप और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दोपहर 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी पिलोमिलो सुराजदीप की यात्रा पर आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल सवेरे 5:30 पर सुराजदीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड मायबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी शनिवार 13 तारीख को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से मायबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कैंपबेल बे लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल रात 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी शनिवार 13 तारीख को सवेरे 10 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी सुराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल दोपहर 1 बजे रंगत से लॉन्ग आइलैंड और सुराजदीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी।

एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप और दोपहर 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी।

0: एमवी जॉली बॉय सुराजदीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल दोपहर 2 बजे सुराजदीप से शहीद द्वीप और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी पिलोमिलो शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कमोटा सुराजदीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी शनिवार 13 तारीख को प्रातः 5:30 पर सुराजदीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। ये था जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष

इंद्रधनुष के इस कार्यक्रम में मैं शबाना आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। आज बातें सजना की। दोस्तों, सजना हर किसी को अच्छा लगता है, मगर जब श्रृंगार किसी खास के लिए हो तो वो सिर्फ सजना नहीं, एक एहसास बन जाता है। आईना भी तब चेहरा नहीं दिल की खुशी दिखाने लगता है। हर गहना, हर रंग, हर अदा बस उसी एक शख्स के नाम हो जाती है।

दोस्तों, मोहब्बत सिर्फ किसी को पाने का नाम नहीं है, बल्कि खुद को किसी का बना देने का एहसास है। जब दो दिल एक दूसरे में बस जाते हैं, तब मैं और तू का फर्क मिट जाता है, और हर दुआ में अपने सजना का नाम होता है, हर खुशी में सजना साथ होता है, और दिल बस यही कहता है कि तुम मेरी दुनिया हो और मैं तुम्हारी।

दोस्तों, जब प्यार सच्चा और गहरा हो जाता है तो इंसान अपने ही घर में होकर भी अजनबी सा लगने लगता है। हर खुशी, हर रास्ता, हर सोच बस उस एक सजना के इर्द गिर्द घूमने लगती है। दूरी चाहे जितनी भी हो, दिल हमेशा उसी के पास रह जाता है।

0: दोस्तों, इंद्रधनुष कार्यक्रम का ये सफर आज बस इतना ही। होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त शबाना को दीजिए इजाजत।
1: इंद्रधनुष।

अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे। इसे प्रस्तुत कर रही थी शबाना। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए रामचरितमानस गान की 267वीं कड़ी।

बल तथा रूप के पुंज श्री राम और लक्ष्मण को तपस्वी वेश में वन में भटकते देख सुग्रीव को एक अव्यक्त भय हुआ। उन्होंने हनुमान को ब्राह्मण का वेश धारण कर उनसे मिलकर इस प्रकार वन में भटकने का कारण पूछने के लिए भेजा। श्री राम ने ब्राह्मण वेशधारी हनुमान को अपना परिचय देकर जानकी हरण की बात कही और फिर प्रश्नकर्ता का परिचय पूछा। प्रभु को पहचान कर हनुमान उनके चरणों पर गिर पड़े और अपना वास्तविक रूप प्रकट किया।

अभी आप रामचरितमानस गान की 267वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे श्रीकांत पारगवकर और संगीत संयोजन किया था सतीश भाटिया ने। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम वतन के गीत।

वतन के गीत कार्यक्रम के तहत अभी आप कुछ देश गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:50 हुए हैं। अब सुनते हैं मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। जन सेवाओं को बताया जाता है कि वर्षा के कारण 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और मछुआरों को सूचित किया जाता है कि कल तक समुद्र में ना जाएं। ये थी मौसम की जानकारी। अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 7 बजे सुनिए जन सूचनाएं। आनंद लीजिए देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी का 7:15 पर, जबकि इसी समय FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर गुड मॉर्निंग अंडमान में पर्यावरण कार्यक्रम का विषय होगा पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं का योगदान। वार्ताकार होंगे मोनिदीप चौधरी और साथ ही कुछ फिल्मी गीत भी आप सुन पाएंगे। सुगम संगीत के तहत सुनिए जगजीत सिंह को सुबह 8:30 पर। सुबह 9 बजे आनंद लीजिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत में बालाजी शंकर का कर्नाटक शैली में गायन आप सुनेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम SMS माई चॉइस का समय होगा दिन के 10 बजे।

दिन के 11 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारित की जाएगी। 11:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत। दोपहर 12 बजे होगा तेलुगु कार्यक्रम। मलयालम कार्यक्रम का समय होगा दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में जगजीत सिंह और गुलाम अली को आप सुन पाएंगे। आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम का समय होगा दोपहर 1:30 पर। 2:30 पर मौसम की जानकारी के साथ हमारी पहली सभा समाप्त होगी, लेकिन 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत 2:30 पर नॉनस्टॉप म्यूज़िक कार्यक्रम और 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे प्राइमरी चैनल पर शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ। 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 7वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 4:40 पर। बाहरों के शाम फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा 4:45 पर। शाम 5 बजे सुनिए तमिल कार्यक्रम। बांग्ला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30 पर। संध्या 6 बजे होगा किसान वाणी कार्यक्रम। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम महफिले कवाली होगा शाम 6:30 पर। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जनसूचनाएँ दी जाएगी 7:15 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का समय होगा 7:20 पर।

श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:55 होने को है। अब संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: एकं भारतीयस्य कल्याणाय विकासाय च केन्द्रीकृतो वर्तते। उपवेशने अस्मिन् अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये दृष्टिं समेत्य देशस्य प्रत्येकं नागरिकं प्रति अस्य सुदृढ मापनयोग्य परिणामेष् परिवर्तनस्य विषये गभीरं मन्थनं भविष्यति। अस्मिन् महत्वपूर्णे उपवेशने समावेशी मानव विकास प्रारूपस्य विषये चर्चां कर्तुं सर्वे मुख्यमन्त्रिणः केन्द्रशासित प्रदेशानाम् उपराज्यपालाः च एकत्रिताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आश्वासितवान् यत् देशस्य चत्वारिंशदधिकैकशत कोटि नागरिकाणाम् आकांक्षाः निश्चप्रचं पूरयिष्यन्ते। तेन समुदीरितं यत् राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधन दलं सदैव राष्ट्रस्य विश्वासं सुदृढं कृतवत् अस्ति। अत्रावधेयं यत् श्रीमोदी गतरात्रौ नवदेहल्याः भारत मण्डपे आयोजितं एनडीए सम्मेलनं संबोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा भणितं यत् देशस्य प्रत्येकमपि नागरिकः विकसित भारतस्य स्वप्नेन पूरितो वर्तते। एषः स्वप्नः इदानीं कस्यापि एकस्य व्यक्तिविशेषस्य प्रशासनस्य वा राजनीतिक दलस्य परिधौ सीमितो नैवास्ति।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा। देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कूचक्र से आजाद हुआ है।
0: अस्मिन्नवसरे एनडीए घटक दलैः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक उपलब्धेः श्लाघनाय एकः संकल्प प्रस्तावः स्वीकृतः। एतदन्तरं सम्पूर्ण विश्वतः प्रधानमन्त्रिणे अभिनन्दन सन्देशाः आगच्छन्तः सन्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः, यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन, इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी देशस्य चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इजराइल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू, कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कॉर्नी सहैव दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिः ली जे म्यूंग इत्यादयः प्रमुख वैश्विक नेतारः श्रीमोदिनं प्रति वर्धापनम् प्रेषितवन्तः। संस्कृति मन्त्रालयेन गतवर्षस्य कृते संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराः अथ च उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्काराः घोषिताः। अकादमी संघस्य सामान्य परिषदा संगीत नृत्य रंगमंच पारंपरिक लोक जनजातीय कला वैविध्येभ्यः कलामंचं यावत् विविध क्षेत्रेभ्यः अष्टोत्तरैकशत प्रसिद्धाः कलाकाराः चतुर्विंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य अथ च पञ्चविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य अकादमी पुरस्कारार्थं चिताः। एते चिताः पुरस्कार विजेतारः अशेषस्य हि देशस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। ये विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः च सम्बद्धाः सन्ति। बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धायाः महिलानां वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य द्वितीय चक्रं प्रति प्रविष्टवत्यौ। इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:01 हुए हैं। जन सूचनाएं। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 78.4 मिलीमीटर वर्षा हुई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 98% तथा न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का

अधिकतम तापमान रहा 30 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 4:55 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय होगा 5:43। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त विमान संबंधी जानकारी। दिल्ली से श्री विजयपुरम आने वाला विमान उड़ान संख्या 2937 सुबह 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा तथा उड़ान संख्या 2936 सुबह 11:40 पर श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त विमान उड़ान संबंधी जानकारी। श्रोताओं एक आवश्यक सूचना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों 31 जुलाई 2026 तक की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। जन सूचनाएं समाप्त हुई। श्रोताओं आपको याद दिला दें, शाम 7:30 पर होगा युवानी कार्यक्रम। रात 8 बजे दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग प्रसारित की जाएगी। 8:30 पर आप सुनेंगे रोजगार समाचार व गौरवगान।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लाभ वितरण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा और अंडमान निकोबार पुलिस DGP कप अंडमान निकोबार राज्य ओपन शतरंज प्रतियोगिता 2026 का आयोजन करेगा।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से 19 जून को शाम 5 बजे आपदा प्रबंधन भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लाभ वितरण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित एक देशव्यापी आयोजन का हिस्सा है, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नई दिल्ली के विज्ञान भवन से करेंगे। इस केंद्रीय कार्यक्रम की कार्यवाही का स्थानीय कार्यक्रम के दौरान सीधा

प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लाभ वितरित किए जाएंगे। नियोक्ताओं, कर्मचारियों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ योजना के उद्देश्यों और इसके लाभों के बारे में जानकारी साझा की जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना है। विभाग ने नियोक्ता संघों के प्रतिनिधियों, व्यापारिक निकायों, कर्मचारियों और लाभार्थियों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक 20,000 करोड़ रुपये की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। विज्ञान केंद्र स्थित नवाचार केंद्र ने छात्रों के लिए वार्षिक सदस्यता कार्यक्रम हेतु पंजीकरण आमंत्रित किए हैं। नवाचार केंद्र छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां वे विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में उभरती प्रौद्योगिकियों का पता लगा सकते हैं, वर्किंग मॉडल बना सकते हैं और स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित गतिविधियों में भी भाग ले सकते हैं। इसकी शुरुआत से लेकर अब तक लगभग 2000 छात्र इस केंद्र का दौरा कर चुके हैं और अपने अभिनव विचारों को आइडिया बॉक्स में डाला है। व्यक्तिगत सदस्यता के तहत स्कूली छात्रों के लिए 2,000 रुपये प्रतिवर्ष जबकि कॉलेज छात्रों के लिए 4,000 प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। कक्षाएं शनिवार और रविवार सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगी। संस्थागत सदस्यता के तहत स्कूल को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष और कॉलेज को 8,000 रुपये प्रतिवर्ष देना होगा। इनकी कक्षाएँ मंगलवार से शुक्रवार तक आयोजित होंगी। इच्छुक प्रतिभागी पंजीकरण के लिए सभी कार्य दिवसों के दौरान सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है। राष्ट्रीय लोक अदालत और DGP कप अंडमान निकोबार राज्य ओपन शतरंज प्रतियोगिता। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच की ओर से श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। 20 जून को सुबह 10 बजे परिसर में आयोजित होने वाले दूसरे राष्ट्रीय लोक अदालत में कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित पड़े मामलों और सर्किट बेंच पोर्ट ब्लेयर में दायर होने वाले पूर्व मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। इच्छुक पक्ष या अधिवक्ता अपने आवेदन 16 जून शाम 5 बजे तक कलकत्ता उच्च न्यायालय सर्किट बेंच परिसर पोर्ट ब्लेयर में जमा कर सकते हैं। आवेदन निर्धारित तिथि तक कार्यकाल की ईमेल पर भी भेजी जा सकती है। निर्धारित सीमा के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर अगली लोक अदालत में सुनवाई की जाएगी। अंडमान निकोबार पुलिस अंडमान निकोबार शतरंज संघ के सहयोग से 27 और 28 जून को पुलिस लाइन में दूसरी DGP कप अंडमान निकोबार राज्य ओपन शतरंज प्रतियोगिता 2026 का आयोजन करने जा रही है। ये प्रतियोगिता फिडे शतरंज नियमों के तहत स्विस सिस्टम के आधार पर आयोजित होगी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों का वर्ष 2026-27 का AICF पंजीकरण करना अनिवार्य है। इस प्रतियोगिता के लिए ₹350 का प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है। ओवरऑल ओपन कैटेगरी के विजेताओं को नकद पुरस्कार, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा सब जूनियर और जूनियर श्रेणियों के लड़कों और लड़कियों में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को अलग से ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इच्छुक प्रतिभागी अपनी प्रविष्टि 25 जून तक पुलिस लाइन स्थित खेल अनुभाग में जमा कर सकते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस कल मनाया जाएगा। इस अवसर पर GB पंत अस्पताल स्थित ब्लड सेंटर अंडमान निकोबार राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे ITI डॉलीगंज में रखा गया है। इस दौरान नियमित रक्तदाताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। अंडमान निकोबार अग्नि एवं

आपातकालीन सेवा की ओर से कल सरकारी निजी अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों तथा अग्निशमन सेवा कर्मियों के लिए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक उमाशंकर ने की। इस अवसर पर उप पुलिस अधीक्षक अंकेश यादव और फायर ब्रिगेड के निरीक्षक भी मौजूद थे। इसका मुख्य उद्देश्य हितधारकों को अंडमान निकोबार अग्नि एवं आपातकालीन सेवा विनियमन 2026 के प्रमुख प्रावधानों और अग्निशमन सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन की जानकारी देना था। पुलिस अधीक्षक ने अपने संबोधन में इस विनियमन को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित बताते हुए धारा 26 और 27 के तहत अग्नि सुरक्षा ऑडिट से जुड़े प्रावधानों पर प्रकाश डाला। संवाद सत्र के दौरान हितधारकों को वार्षिक स्वघोषणा, थर्ड पार्टी फायर ऑडिट, अग्निशमन सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव, आपातकालीन तैयारी के उपायों और अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने में मालिकों और प्रबंधन अधिकारियों की जिम्मेदारी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मौजूदा अग्नि सुरक्षा उपायों में कमियों की पहचान करने और वैधानिक अनुपालन आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए फायर ऑडिट किए जाएंगे। मध्योत्तर अंडमान में विशेष न्यायाधीश पॉक्सको मायाबंदर ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को पॉक्सको अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा आईपीसी की धारा 506 के तहत किए गए अपराध के लिए आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। पूरे मामले की जांच थाना प्रभारी निरीक्षक विकास सिंह के नेतृत्व में चलाया गया। कृषि विज्ञान केंद्र निमूडेरा ने कृषि विभाग के सहयोग से हाल ही में खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों और कृषि सामग्री विक्रेताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने संतुलित उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और जैविक खेती के तौर तरीकों को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला। ये पूरा कार्यक्रम केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर जय सुंदर और कृषि विज्ञान केंद्र निम्बुडेरा के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर वाई रामकृष्ण के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लाभ वितरण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा और अंडमान निकोबार पुलिस डीजीपी कप अंडमान निकोबार राज्य ओपन शतरंज प्रतियोगिता 2026 का आयोजन करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:15 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम देश रागिनी।

श्रोताओं, मातृभूमि के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना हर भारतीय के हृदय में बसती है। देश के लिए त्याग और निष्ठा का संदेश देता यह भावपूर्ण गीत हम अब सुनते हैं।

देश की सीमाओं की रक्षा में दिन रात तत्पर हमारे वीर जवानों का जीवन त्याग, साहस और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। राष्ट्रीय गौरव, एकता और विजय की भावना से ओतप्रोत यह गीत हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।

0: श्रोताओं, देश को अच्छा बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। अपने कर्म, अपने व्यवहार और अपने विचारों से, यही सच्ची देशभक्ति है और यही इस पंक्ति की असली संदेश। अब चाहेंगे कार्यक्रम से इजाजत।
1: बीड़ी सिगरेट का धुआं धूम्रपान ना करने वालों के लिए भी हानिकारक है। ये गले से अंदर जाके ना सिर्फ फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि कुछ ही मिनटों में खून को गाढ़ा करके दिल तक जाने वाली मुख्य नसों को नष्ट कर देता है। इससे दिल में खून संचार कम होने लगता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। पैसिव स्मोकिंग जानलेवा है, इसे नकारें। तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पे कॉल करें।
2: तेज बुखार, पसीना आना, सिर और शरीर में दर्द, उल्टी और कमजोरी,
3: ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं।
2: मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
3: समय पर इलाज न मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
2: सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें।
3: घर और आसपास पानी जमा न होने दें।
2: पानी की टंकियों और बर्तनों को ढककर रखें।
3: अगर बुखार हो तो रक्त की जाँच करवाएं।
2: अब हम कर सकते हैं।
3: अब हमें करना होगा।
2: मलेरिया को मिलकर हराना होगा।
3: स्वस्थ जीवन अपनाएं, मलेरिया को दूर भगाएं।
2: स्टेट हेल्थ सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

0: नमस्कार श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान। लीजिए पहले सुनिए पर्यावरण कार्यक्रम के तहत पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं का योगदान विषय पर श्रीमती मुनिदीप चौधरी के साथ पूर्व प्रसारित वार्ता।
1: पर्यावरण के संरक्षण में भारतीय महिलाओं की महती भूमिका है। पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन में महिलाओं की भूमिका को अलग अलग विद्वानों ने परिभाषित किया है। कार्ल मार्क्स के अनुसार कोई भी बड़ा सामाजिक परिवर्तन महिलाओं के बिना नहीं हो सकता है। कोफी अन्नान के अनुसार इस ग्रह का भविष्य महिलाओं पर निर्भर है। रियो डिक्लेरेशन में माना गया है कि पर्यावरण प्रबंधन एवं विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सतत विकास हेतु महिलाओं की पूर्ण भागीदारी आवश्यक है। भारतीय संदर्भ में

विवेचना की जाए तो भारतीय महिलाएं वैदिक काल से ही पर्यावरण संरक्षण की पक्षधार रही है। हर भारतीय घर में तुलसी केले का पौधा होना उनका पूजन हमारे पर्यावरण से जुड़ाव को ही परिलक्षित करता है। प्रातःकाल को सूर्य अर्घ्य देना, चंद्रमा का पूजन, जल का पूजन, भूमि पूजन सहित पर्यावरण के प्रत्येक अजैविक व जैविक घटक के प्रति सम्मान का सूचक है। बदलते सामाजिक मूल्य, घटते मानवीय मूल्य, वैश्वीकरण एवं आधुनिकता की आड़ में हम पर्यावरण को निरंतर प्रदूषित करते जा रहे हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे संस्कारों को आधुनिक समाज ने रूढ़िवादिता कहकर हमें पर्यावरण संरक्षण से दूर कर दिया है, किंतु आज पुनः हमें अपनी संस्कृति की ओर लौटकर पर्यावरण को संरक्षित करना होगा। भारतीय महिलाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही हैं। पर्यावरण संरक्षण में भारतीय महिलाओं ने सदैव ही योगदान दिया है। जहां भी पर्यावरण को हानि पहुंचाने का कार्य हुआ है, उसका मुखर विरोध हमारी पर्यावरणविद महिलाओं सहित सभी ने किया है। सर्वप्रथम हम अपनी संस्कृति पर दृष्टिपात करें और सामाजिक प्रथाओं और रीति रिवाजों को देखें तो ये पता चलता है कि प्राचीन काल से ही महिलाएं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रही है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज भी महिलाओं द्वारा व्रत त्यौहार के अवसर पर या यूं ही प्रतिदिन के क्रियाकलापों एवं पूजा अर्चना में अनेक वृक्षों यथा पीपल, तुलसी, आंवला, अशोक, बेल, शमी, नीम, आम आदि तथा अनेक पुष्पों एवं विभिन्न पशुओं, गाय, बैल, चूहा, घोड़ा, सांप, बंदर, उल्लू आदि को सम्मिलित करना एवं उनकी पूजा अर्चना के माध्यम से संरक्षण प्रदान करना देखने को मिल जाता है। इसी तरह हमारी महिलाओं ने न केवल पेड़ पौधों अपितु पशु पक्षियों के प्रति भी संरक्षण की संकल्पना प्राचीन काल से ही विद्यमान है। यही नहीं, जल स्रोतों के प्रति भी संरक्षण की भावना महिलाओं में प्राचीन काल से ही चली आ रही है, जैसे गंगा पूजन, कुओं की पूजा करना अथवा तालाब की पूजा करना। इस प्रकार स्पष्ट है कि संपूर्ण पारिस्थितिकी को संतुलित बनाए रखने के प्रति महिलाएं सदैव से ही अग्रणी रही है। हमारी भारतीय संस्कृति में रची बसी महिलाओं द्वारा प्रकृति संरक्षण अथवा पर्यावरण संरक्षण की यह भावना पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई है एवं आज भी देखने को मिलती है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना समीचीन प्रतीत होता है कि भारत की सामाजिक रचना में महिलाओं की अपेक्षा पुरुष कई गुना अधिक महत्वपूर्ण एवं सुविधा भोगी है। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण ने महिलाओं की जीवन शैली को बुरी तरह प्रभावित किया है। यही कारण है कि पर्यावरण एवं प्रकृति से सीधे रूप में संपर्क में रहने के कारण ये ग्रामीण महिलाएं पर्यावरण संरक्षण के प्रति अधिक सचेष्ट है। आज ऐसे क्षेत्रों में जहां अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं, जलाने के लिए लकड़ी एकत्र करने हेतु महिलाओं को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसी तरह जहां पानी की किल्लत है, खासतौर से रेगिस्तानी इलाकों एवं पठारी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में पानी जुटाने का भी दायित्व महिलाओं पर ही है और एक एक घड़ा पानी के लिए 10-15 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इन प्राकृतिक संसाधनों यथा वन, मिट्टी एवं जल से महिलाओं का सीधा एवं गहरा संबंध है। यही कारण है कि महिलाओं को ही इसका संरक्षक माना गया है। खासतौर से आदिवासी लोगों में तो वन संपदा की अर्थव्यवस्था पूर्णतः महिलाओं की ही मानी जाती है। यही कारण है कि पर्यावरण संरक्षण, खासतौर से वन संरक्षण में महिलाओं की भागीदारी अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो गई है और महिलाएं इसके प्रति जागरूक भी है। भारतीय इतिहास में ऐसे कई पर्यावरण संरक्षण आंदोलन हुए हैं जिनकी प्रणेता महिलाएं रही है। उनमें से कुछ प्रमुख है, खेजरली आंदोलन। राजस्थान में खेजरली आंदोलन पर्यावरण चेतना का अतुलनीय उदाहरण है। राजस्थान के खेजरली गांव में हुआ यह आंदोलन गांव के स्थानीय लोगों द्वारा किया गया था। सन 1730 में जोधपुर के महाराज द्वारा बनाए जाने वाले महल के निर्माण हेतु जब लकड़ी की आवश्यकता हुई तो राजा के सिपाही कुल्हाड़ी लेकर खेजरली गाँव में पहुंचे, जहाँ खेजड़ी के वृक्ष बहुतायत से लगे हुए थे। किंतु गांव की महिला अमृता देवी ने सिपाहियों का विरोध किया और वृक्षों को काटने से बचाने के लिए अपनी तीन पुत्रियों सहित वृक्षों पर लिपट गई तथा वृक्ष बचाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस खबर के प्रचारित होते ही 363 लोगों ने भी वृक्ष संरक्षण हेतु अपने प्राणों को त्याग दिया। इस घटना को रिचर्ड बर्वे द्वारा संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण देते हुए प्रचारित किया गया। चिपको आंदोलन। प्राण जाए पर वृक्ष न जाए की भावना पर आधारित यह चिपको आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली स्थान से सन 1973 में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन के

प्रणेता श्री सुंदरलाल बहुगुणा थे, किंतु महिलाओं ने इस आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गौरा देवी इस आंदोलन की प्रमुख महिला थी, जिन्हें चिपको आंदोलन की जननी और चिपको वुमन भी कहा जाता है। लगभग एक दशक तक चले इस पर्यावरण संरक्षण आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण की महत्ता को जन सामान्य तक पहुँचाया। इसे इको फेमिनिस्ट आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी कार्यकर्ता अधिकांश महिलाएं ही थीं। गौरा देवी के नेतृत्व में 26 मार्च 1974 को रेनी के वृक्ष काटने आए लोगों को चमोली गांव की महिलाओं ने यह कहकर भगा दिया कि जंगल हमारा मायका है, हम इसे कटने नहीं देंगे। विश्लेषण किया जाए तो यह शब्द भी ही भारतीय महिलाओं की पर्यावरण संरक्षण की भावना को दर्शाता है। जिस तरह उनके जीवन में अपने पृथ्वी पक्ष का स्थान है, वही स्थान वृक्षों का उनके जीवन में है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति ऐसा स्नेह शायद ही किसी संस्कृति में दृष्टिगोचर होगा। नवधान्या आंदोलन। इस आंदोलन के अंतर्गत जैविक खेती के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाता है, किसानों को बीज वितरित किए जाते हैं, उपभोक्ताओं को जंक फूड और हानिकारक कीटनाशकों व उर्वरकों के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने व जैविक पोषक युक्त खाद्य पदार्थों के उत्पादन व उपयोग की जानकारी देते हैं। इस आंदोलन का उद्देश्य भोजन संपन्न नगर बनाना है। साथ ही इस आंदोलन के माध्यम से भारत की जैव विविधता के संरक्षण का भी कार्य किया जा रहा है। नवधान्या का अर्थ है नौ बीज। यह आंदोलन महिला केंद्रित आंदोलन है, जो कि जैविक एवं सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण का कार्य कर रहा है। यह आंदोलन पर्यावरणविद वंदना शिवा के नेतृत्व में सन 1987 से चलाया जा रहा है। महिलाओं की महत्ता को देखते हुए ही राष्ट्रीय वन नीति 1988 में महिलाओं की सहभागिता को महत्व दिया गया। राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में महिलाओं ने ऊसर व रेतीली जमीनों को हरे भरे खेतों में बदल दिया। महिलाओं द्वारा संचालित सेवा मंडल संस्था को 1991 में पर्यावरण संरक्षण हेतु केपी गोयन का पुरस्कार दिया गया। बेटी बचाओ पर्यावरण बचाओ की भावना के साथ सन 2006 में राजस्थान के राजसम्मत जिले के पिपलंत्री के ग्राम में बेटी के जन्म पर 111 वृक्ष लगाने का नियम बनाया गया। इस गांव को 2008 में निर्मल ग्राम पुरस्कार भी मिला है। अंततः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण में भारतीय महिलाओं का योगदान उल्लेखनीय है।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
4: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
5: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
5: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: आकाशवाणी श्री विजयपुरम से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान। श्रोताओं, चक दे इंडिया, आइए सुनवाते हैं इस फिल्म का गीत, जिसे गाया है हेमा सरदेसाई ने। इस गीत को लिखा है जयदीप सहनी ने और संगीत से सजाया है सलीम सुलेमान ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके से। समीर के लिखे इस गीत को आवाजें दी हैं अलका याग्निक और उदित नारायण ने, और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

अगला गाना जो आप सुनेंगे उसे आवाज़ें दी हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। फिल्म का नाम है चेहरा। गाने के बोल लिखे हैं समीर ने तथा संगीत से सजाया है राम संपत ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दामिनी का गीत। समीर के लिखे इस गीत को आवाज़ें दी हैं कुमार सानू और साधना सरगम ने। इसे संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दामिनी का गीत। समीर के लिखे इस गीत को आवाज़ें दी हैं कुमार सानू और साधना सरगम ने। इसे संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।
0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 8 बजने वाले हैं। अब अगला कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रूपये के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों

0: के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
1: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना,

0: राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
1: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
0: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
2: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है, जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
0: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
5: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
3: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा,

0: चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। यह टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
1: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
0: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्य ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1000 रूपये तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने एनटीए ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमरीका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में पीओके की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने पीओके में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का पीओके में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी आईटीबीपी। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार, 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खान पान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू चेयर 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग इन न्यू दिल्ली टुडे। Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments worth 1 lakh crore rupees into West Bengal. IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. US military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of Indian sportspersons and urges the nation to set ambitious targets for Olympics. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat.

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है आपके भरपूर मनोरंजन के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बैराग से। लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सरगम से लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाज़ों में। गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
1: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
0: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
0: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
1: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
0: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
1: धन्यवाद दीदी।
0: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल YouWin पर रजिस्टर करना मत भूलना।
3: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.youwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: अगला गाना जो आप सुनेंगे, इसको आवाज़ें दी हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म का नाम है कश्मीर की कली। गाने के बोल लिखे हैं SH बिहारी ने और संगीत से सजाया है OP नैयर ने।

आनंद बख्शी का लिखा हुआ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीतबद्ध। श्रोताओं सुनिए हम जोली फिल्म का गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने।

0: कराने का ना रे। चेक चेक, हेलो चेक। अरे अपना HIV स्टेटस चेक किया क्या?
1: नैको व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: किशोर कुमार की आवाज़ में सुनिए फिल्म अनुरोध का गीत। गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म एक महल हो सपनों का। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में गीत रचना शाहिर की और संगीत से सजाया है रवि ने।
1: एक महल हो

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। श्रोताओं, आपको बता दें, सवेरे 10 बजे आप लुत्फ उठा पाएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम SMS माई चॉइस का। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बालाजी शंकर का कर्नाटक शैली में गायन। इनके साथ वायलिन पर दिल्ली पी सुंदर राजन, मृदंगम पर श्री मुश्नम राजा राव और कंजीरे पर हरिशंकर ने संगति की है। तो आइए बालाजी शंकर का गाया पहले सुनते हैं राग तोड़ी, जो खंड जाति अड़ा ताल पर निबद्ध है। वह कृति पल्लवी गोपाल अय्यर की है।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आप सुनिए राग नट्टई, जो आदि ताल में निबद्ध है कृति नारायण गिरधर की है।

0: तेज बुखार, पसीना आना, सिर और शरीर में दर्द, उल्टी और कमजोरी,
1: ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं।
0: मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
1: समय पर इलाज न मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
0: सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें।
1: घर और आसपास पानी जमा न होने दें।
0: पानी की टंकियों और बर्तनों को ढककर रखें।
1: अगर बुखार हो तो रक्त की जाँच करवाएं।
0: अब हम कर सकते हैं।
1: अब हमें करना होगा।
0: मलेरिया को मिलकर हराना होगा।
1: स्वस्थ जीवन अपनाएं, मलेरिया को दूर भगाएं।
0: स्टेट हेल्थ सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, और अब कार्यक्रम के अंत में प्रस्तुत है आदि ताल में निबद्ध राग गौरी मनोहारी, कृति श्री वटसन के हैं।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं श्रोताओं, अब पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एसएमएस माय चॉइस।

SMS माई चॉइस कार्यक्रम के सफर में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त शबाना। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम अपने पसंद के गीत सुनने के लिए आपको अपना नाम, पता, फिल्म का नाम व गाने के बोल लिखकर मैसेज करना होगा इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474234000, 9474234000। तो चलिए फिर करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और आपको सुनवाते हैं पहला गीत जिसे हमने लिया है याद रखेगी दुनिया फिल्म से। इस गीत को सुनने की ख्वाहिशमंद है हमारे ये सभी दोस्त, उदयपुर राजस्थान से सुशील यादव, मोहित, नमिता और कार्तिक यादव।

हमारे अगले फरमाइश करते हैं शादीपुर श्री विजयपुरम से आबिदा, अफजल और अरशद। हमारे ये दोस्त सुनना चाहते हैं तलाश फिल्म का ये नगमा।

बाराटांग, मिडिल अंडमान से रमेश, अमित, सुजाता और सोनिया, हमारे ये सभी दोस्त सुनना चाहते हैं हम है राही प्यार के फिल्म का ये गीत।

अब पेश है कालीचरण फिल्म का गाना। इस गीत को सुनने के शौकीन है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
1: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners, starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today.
0: Nexa. ब्रेक के बाद फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम SMS माय चॉइस में आप सभी का फिर से स्वागत है। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कलाकार फिल्म का गीत। इस गीत को सुनने के लिए हमें SMS भेजा है पद्मा टॉकीज नेपा नगर MP से सुदर्शन, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति सुरभि, अश्विन मंगला और राजेंद्र।

अब सुनिए दो कलियां फिल्म का गीत। सुनने के ख्वाहिशमंद है हमारे ये दोस्त दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से, मोहम्मद यासीन, साइमा, हसन, बाबू अहद, मिफ्रा और चार।

आप सुनते हैं गुलामी फिल्म का गाना, फरमाइश करता है टोरावाल नवा शहर पंजाब से गगनदीप, तृप्ता, प्रियंका, प्रियम, बेबी वॉमिका और वाणी।

और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत जंगली फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहते हैं पिंगा वाला चौक जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति, मन्नत, भरत और कमल।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की 1304वीं कड़ी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छुपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
3: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
3: श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
2: जी
3: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
2: जी
3: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
2: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई है, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजीत जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
3: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
2: जी
3: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
2: जी
3: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
2: श्रोताओ, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओ, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
3: तो श्रोताओ, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
2: जी
3: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है। यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है।
2: जी
3: या नारंगी या लाल भी हो सकता है किस्मों और स्थान।

0: के अनुसार।
1: जी।
0: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते
1: जी।
0: हैं। फिर क्या होता है?
1: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भूनकर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
0: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
1: जी।
0: तो श्रोताओं, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
1: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
0: जी विमलेश, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
1: जी।
0: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
1: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
0: जी, श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
1: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियां उनके लिए अनुकूल हैं।
2: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
3: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पांडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है, वो शिक्षा शिक्षा नहीं है।

0: ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
1: जी,
0: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती में कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
1: जी,
0: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करें। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
2: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
0: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
1: जी,
0: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
2: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
0: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
1: जी,
0: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
2: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
2: हाँ?
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
2: और ब्रह्मचर्य?
0: रामकृपाल
1: जी,
0: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
1: जी,
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
2: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
1: जी,
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
2: जी हाँ,
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें एक दो विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
2: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
2: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
2: जी,
0: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है, उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है।

0: अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है? हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5 इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जैसे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल,
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

0: श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडेचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
1: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है, और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।
2: घर के पास लगा था मेला,

दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल।

की सैर तो हो गई इस गीत में, अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।

मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथ

0: पक्षियों को भी बताना कि क्या देखा वहां।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1304वीं कड़ी सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने गंवार फिल्म से लिया था। स्वर दिया था मोहम्मद रफ़ी ने, बोल राजेंद्र कृष्ण के थे व धुन बनाई थी नौशाद ने। अब आपको सुनवाते हैं चोरी चोरी फिल्म का गाना लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने व संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में ये था दुनिया फिल्म का गाना, जिसे लिखा था हसरत जयपुरी ने व संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन ने। अब आपको सुनवाते हैं नास्तिक फिल्म का गीत प्रदीप के स्वर में। बोल सी रामाचंद्रा के हैं व धुन बनाई है प्रदीप ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
1: Hey, still stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
0: ब्रेक के बाद भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है। किशोर कुमार की आवाज में आइए सुनते हैं हाथी मेरे साथी फिल्म का गाना। बोल आनंद बख्शी के हैं, वह संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

प्रदीप के स्वर में ये था वामन अवतार फिल्म का गाना। बोल प्रदीप के थे, वधुन बनाई थी अविनाश व्यास ने। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत काला बाजार फिल्म से। स्वर दिया है गीता दत्त और मोहम्मद रफी ने। गीत रचना शैलेंद्र की, वधुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

0: అయ్య బాబు, తన పదము చేర్చి పాట కూర్చలేదా
1: సుభాష్.

0: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
1: अरे वाईफाई, सुनना मेरी बात।
2: हाँ भाई, बोलने का ना।

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद के बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देशभर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल, सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा में भारत में निर्मित पहले एयरबेस C-295 के प्रथम परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को भी

0: consecutive day of self-defense strikes targeting Iranian air defense systems, radar installations, communications infrastructure, and surveillance capabilities in response to what Washington called continued Iranian aggression. Sports fans across the world are set for a month-long football spectacle as the 2026 FIFA World Cup kicks off tonight at the historic Estadio Azteca in Mexico City. In the opening match, hosts Mexico will take on South Africa in a Group A clash. The match begins at 12:30 a.m. Indian Standard Time. And with that, we end this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:11 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज के हमारे फनकार हैं जगजीत सिंह और गुलाम अली। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं जगजीत सिंह की आवाज से, जिसे लिखा है राणा शाहरी ने।

श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे। आज के हमारे फनकार थे जगजीत सिंह और गुलाम अली।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। इस कार्यक्रम में मैं शबाना आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, इस कार्यक्रम के जरिए अपने पसंद के गीत सुनने के लिए आप हमें अपना नाम, पता, फिल्म का नाम व गाने के बोल लिखकर व्हाट्सएप मैसेज भेजिए। इस नंबर पर हमारा नंबर है 9474234000, 9474234000। तो चलिए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत डार्लिंग फिल्म से। इस गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजा है हैवलॉक से मनीष ने।

हमारे अगले फरमाइश करता है मेरठ उत्तर प्रदेश से दिग्दर्शन गौड़। हमारे ये दोस्त सुनना चाहते हैं कूली नंबर 1 फिल्म का ये गाना।

अब आपको सुनवाते हैं कबीर सिंह फिल्म का गीत। इस गीत को सुनने की ख्वाहिशमंद है गांधी चौक रोपर पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर जैतेग और मिका विर्क।

जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान सलमान इरफान इसरार और नरगिस हमारे ये सभी दोस्त सुनना चाहते हैं दे दे प्यार दे फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

आइए अब सुनते हैं तुम बिन फिल्म का गीत। इस गीत को सुनने के शौकीन है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे।

श्रोताओं, और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत संगम फिल्म से। इस गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज आया है सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित और बेबी गर्वी की।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेकबराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देशभर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर DG साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेब्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए

0: रात लगे बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है। जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते हैं, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
1: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
1: डॉ जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
2: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
1: ओमान की खाड़ी में पलाव ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमरीकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
3: मिलिट्री कॉन्फ्रेंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जोर्दा में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जोर्दान के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जोर्दान या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेस में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
2: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड,
1: फ्रांस के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिम हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका व्यक्त की गई है। इसी दौरान वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में कहा जाता है कि खराब मौसम के चलते अंडमान सागर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिसके कारण मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 14 जून तक समुद्र में ना जाएं। परसों सुबह तक के मौसम के बारे में अनुमान है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या

गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। श्रोताओं, इस समय 2:32 होने वाले हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 MHz FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब आप सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: Non-stop music!

नॉन स्टॉप कार्यक्रम के सफर में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त शबाना। दोस्तों आपको बता दें, गीतों का ये सफर जारी रहेगा अब से लेकर 3:30 तक, लेकिन बीच में छोटा सा ब्रेक लिया जाएगा और उसके तुरंत बाद ही ये सफर फिर से चल पड़ेगा। तो फिर देर किस बात की है, चलिए निकल पड़ते हैं शबाना के साथ नॉन स्टॉप म्यूजिक के सफर में।

0: मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
5: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: दोस्तों अभी आप ओम शांति ओम सत्यमेव जयते सोने की टुट्टू की स्वीटी टाइगर जिंदा है लव यात्री बत्ती गुल मीटर चालू जीरो राजी गोल्ड पल पल दिल के पास छिछोरे द डर्टी पिक्चर और तुम्हारी सुलु इन सभी फिल्मों के गीतों का आनंद ले रहे थे। इसके साथ ही नॉन स्टॉप म्यूजिक का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। दीजिए इस कार्यक्रम से शबाना को अब इजाजत।
1: Non-stop music!

0: विविध भारती
1: FM 3 विजयपुरम
2: 100.9 आपका हमसफर।

दोस्तों, आपने ट्यून किया है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। समय हुआ है दोपहर के 3:30। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

इस कार्यक्रम में मैं शबाना आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कभी कभी हमारा दिल ऐसी ख्वाहिशें पाल लेता है जो हकीकत से कहीं दूर होती है, फिर भी उम्मीद का एक दीपक जलता रहता है कि शायद कोई अधूरी कहानी पूरी हो जाए।

दोस्तों, जब कोई धीरे धीरे दिल के करीब आता है, हर दिन नया और हर मौसम सुहाना हो जाता है। बिना कुछ कहे वो सब कुछ कह जाता है और दिल उसी का दीवाना हो जाता है।

दोस्तों, किसी भी चीज को पाना और खोना ये तो किस्मत की बात है, लेकिन किसी की जिंदगी में आ जाने से ऐसा लगता है कि मानो तुमसे ही दिन होता है और तुमसे ही सुरमई शाम भी आती है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे हैं। अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। इस सभा की शुरुआत में सबसे पहले सुनते हैं निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनलामन एनजे रॉकर हमांग एंगजे तका लमकत एलंगी मीडियम वेव 438.6 मीटर 684 किलोहर्ट्ज रमांग एलंगी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम अन्गे निकोबारी प्रोग्राम तहांग।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
3: 870-001-4242।
1: मिन कहतलोन ही इंगी हराब मिन कहतलोन ही तरन मिने महावट कर चोग।

0: തികഞ്ഞ് ഡാനിയൽ വിൽക്കിൻസൺ, ഐറേനിയസ് സാംസൺ, ജൊഹേന ജസ്റ്റിൻ, മാർത്ത ഹില്ലറി ഫാനുവൽ
1: श्रोताओं, अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 7वीं कड़ी।

हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विथ मी या आरजे चेतन। पूरा दिन काम करने के लिए आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस ऊर्जा के लिए नाश्ते से बेहतर और कुछ नहीं। इसलिए नाश्ते को दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन माना जाता है। दरअसल रात के खाने के बाद हम काफी लंबे समय तक कुछ नहीं खाते, ऐसे में सुबह का नाश्ता पौष्टिक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। खाली पेट बनता है एसिड। हाँ दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा तो खाली पेट रहने से पेट में जो पाचन रस उत्पन्न होते हैं उनसे एसिड बनने लगते हैं। इससे एसिड से हमारी अंतों को तो नुकसान पहुंचता है, साथ ही हम कमजोर भी होने लगते हैं। सही मायनों में देखा जाए तो नाश्ता न करने का अर्थ है शरीर को पर्याप्त ऊर्जा न मिलना।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।
1: अगर नाश्ता नहीं करते हैं तो कुछ समय बाद खाने की इच्छा होती है और फिर हम पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। ऐसे में हम भूख मिटाने के चक्कर में हम अनहेल्दी फूड लेने लगते हैं। मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर का वह ईंधन है जिससे हमारा शरीर ठीक से काम करता है। विभिन्न कार्यों का करने के लिए मस्तिष्क और स्नायु तंत्रों को इस ईंधन की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति न होने पर बॉडी अनहेल्दी फूड खाने लगता है। इस तरह से अगर आप सुबह का नाश्ता नहीं लेते हैं तो इसका असर आपके मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है। मेटाबॉलिज्म वो प्रक्रिया है जिसमें बॉडी भोजन को एनर्जी में बदलती है ताकि बॉडी का कार्य ठीक से चलता है। नाश्ता पूरी रात की नींद के बाद मेटाबॉलिज्म के काम पर लगता है। अगर नाश्ता ना किए जाए तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया धीमी होने के कारण कैलोरी जमने के स्थान पर बॉडी में जमा होने लगता है। युवा लोग मानते हैं कि अगर वो सुबह नाश्ता नहीं करेंगे तो उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उनका सोचना गलत है। नाश्ता न करने का परिणाम युवा अवस्था में भी कम नुकसानदेही नहीं है। अगर पौष्टिक नाश्ता उचित मात्रा में न लिए जाए तो शरीर कमजोर हो जाता है और वो दिन भर काम करना मुश्किल हो जाता है। नाश्ता न करने से डायबिटीज व मोटापे जैसे परेशानियां भी घेर सकती है। दिन का भोजन कम मात्रा में हो तो चल सकता है, लेकिन सुबह का नाश्ता अच्छी मात्रा में पौष्टिक व स्वास्थ्यवर्धक होना बहुत जरूरी है। हेल्थ इज वेल्थ, सिर्फ ये कहावत तो आपने सुनी होगी। ये महज एक कहावत नहीं बल्कि जिंदगी की हकीकत है। अक्सर महिलाएं सुबह के नाश्ते को नजरअंदाज करती है। वह घर के लोगों के खान पान पर तो पूरा ध्यान देती है, लेकिन स्वयं को हमेशा भूल जाती है। उनके लिए भी ब्रेकफास्ट करना जरूरी है। सुबह का नाश्ता दिन भर की एनर्जी तो देती है, साथ ही यह शरीर को संतुलित भी बनाए रखता है। इसीलिए चाहे वह युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो या फिर महिला, सबके लिए नाश्ता जरूरी है। नाश्ता अधिक फैट बर्न करके आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। नाश्ता अगर प्रोटीन युक्त और फैट फ्री किया जाए तो दिन में अधिक खाने की इच्छा नहीं होती। साथ ही नाश्ते में न्यूट्रिशन फूड न लेने की वजह से वजन बढ़ता है, जिसे कम करना आसान नहीं होता। बॉडी में एनर्जी और दिन भर स्फूर्ति के बनाए रखने के लिए ताज़े और पौष्टिक तत्वों से युक्त नाश्ता करना चाहिए। ऐसा नाश्ता लेना चाहिए जो ईंधन की तरह काम करता है। कार्बोहाइड्रेट युक्त नाश्ता सबसे बेहतर है। यह आहार ग्लूकोज को धीरे धीरे रक्त प्रवाह में जाने देता है, जिसे आप लंबे समय तक चुस्त बने रहते हैं।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: तो दोस्तों, ब्रेकफास्ट के फायदे सुन लीजिए एक बार फिर। एक रिसर्च के अनुसार ब्रेकफास्ट करने से शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छे से होता है, शरीर में ऊर्जा का स्तर बरकरार रहता है, इंसुलिन का स्तर सामान्य रखने में मदद मिलती है, डायबिटीज के रोगियों के लिए अत्यंत जरूरी है, मोटापा व शरीर के वजन नियंत्रण रखने में मदद मिलती है, शरीर की पाचन क्षमता ठीक रहती है, मस्तिष्क को पर्याप्त पोषण व ऊर्जा मिलती है व शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। अपनी अपनी पाचन शक्ति व कार्यशैली के अनुसार लोग हल्के या भारी नाश्ता करना पसंद करते हैं। एक सामान्य नाश्ता ऐसा हो जो आपकी ऊर्जा की जरूरत

को पूरा करके साथ साथ शरीर को पोषण भी प्रदान करे। अर्थ था लंच या डिनर की तरह ब्रेकफास्ट भी संतुलित होना चाहिए। यह आपके पूरे दिन के कैलोरी जरूरत का 25% होना चाहिए। स्प्राउट्स यानी अंकुरित चने, मूंग, सोयाबीन आदि को ले सकते हैं। दलिया या खिचड़ी, रोटी या सब्जी, इडली, पोहा, डोसा आदि, पराठा, दही आदि, बच्चों को उनकी पसंद का ध्यान रखते हुए हेल्थी ब्रेकफास्ट दे। वेल डियर फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। दिस इज चेतन सिंह, बाय फॉर नाउ। आई विल गेट बैक टू यू विथ मोर सच यूजफुल इन्फॉर्मेशन इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। टिल देन, बाय।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की सातवीं कड़ी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:40 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज व कल के कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले सुनते हैं आज के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:45 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम आप सुनेंगे। शाम 5 आप तमिल कार्यक्रम का आनंद ले पाएंगे। बांग्ला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 5:30 पर। संध्या 6 आप सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम, विषय रहेगा टेरेस गार्डन। संध्या 6:30 पर आप आनंद ले पाएंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम महफिले कवाली का। शाम 7:15 पर आपका समय रहेगा मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाओं का। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया आप सुनेंगे 7:20 पर। 7:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम यू वार्निंग। रात्रि 8 आप सुन पाएंगे दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला। 8:30 पर रोजगार समाचार, तत्पश्चात सुनिए गौरव गान। FM 100.9 पर रात्रि 10 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 8:45 पर समाचार संध्या, 9 News@9, 9:30 पर कंट्री वाइड, 9:45 पर इनसाइट और 10 फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम संदेशे आते हैं आप सुन पाएंगे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल प्रातः 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। एग्री टिप्स कार्यक्रम होगा कल प्रातः 5:55 पर। जलियानों का यात्रा कार्यक्रम सुनिए 6:10 पर। 6:15 पर आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन पाएंगे, शीर्षक होगा बच्चे। रामचरितमानस गान सुनिए 6:30 पर। 6:50 पर मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा। FM 100.9 पर 7:15 पर प्राय

आयोजित कार्यक्रम सुनिए भूले बिसरे गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। 7:15 पर ही देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा देश रागिनी। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का समय रहेगा 7:30 पर। सुबह 8:30 पर आप सुगम संगीत कार्यक्रम में आप विभिन्न कलाकारों को सुन सकते हैं। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने आप सुन पाएंगे सवेरे 9:00। कल सवेरे 9:30 पर आप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आनंद ले पाएंगे। सुबह 10:00 आप संदेश टू सोल्जर सुन पाएंगे। प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए NCERT के दिन में 11:00, कड़ी होगी 1305। दोपहर 11:30 पर आप सुन पाएंगे निकोबारी कार्यक्रम। तेलुगु कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 12:00 और मलयालम कार्यक्रम का आनंद आप ले पाएंगे 12:30 पर। महफिले कवाली कार्यक्रम आप सुनेंगे 1:10 पर। फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम आप सुन पाएंगे 1:30 पर। दोपहर 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद FM 100.9 MHz पर फिल्मी गीतों का आनंद ले पाएंगे 4 प्रोग्राम हेलो डियर फ्रेंड्स में। फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम सुनिए यूं ही गाते रहो 3:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगा 5:00 तमिल कार्यक्रमों के साथ। बांग्ला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 5:30 पर। शाम 6:00 आप सुनेंगे कृषि जगत कार्यक्रम। समाचार तरंगणी का समय रहेगा 6:30 पर। 6:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए लम्हे की 8वीं कड़ी। शाम 7:15 पर समय रहेगा मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाओं का। 7:30 पर आप सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम। 8:00 सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग। 8:30 पर रोजगार समाचार, तत्पश्चात सुनिए गौरव गान। श्रोताओं, ये थे आज व कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 438.6 मीटर अथवा 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 4:45 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं बेताज बादशाह फिल्म का ये गीत। गायक कलाकार है उदित नारायण और सारिका कपूर। धुन तैयार की है आनंद मिलन ने और रचना की है समीर की।

हमारी अगली पेशकश है फिल्म ये दिल लगी से। आवाज़ें हैं अभिजीत व उनके साथियों की, संगीत निर्देशन है दिलीप सेन व समीर सेन और रचनाकार है समीर।

श्रोताओं आप सुनिए अभिजीत की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है अंजाम, रचना की है समीर ने और संगीत से सजाया है आनंद मिलन ने।

श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम बहारों की शाम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 5 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं तमिल कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 5:30 हुए हैं। श्रोताओं, चलिए सुनते हैं बांग्ला कार्यक्रम।
1: कर्म करे जाओ, फलेर प्रत्याशा करो ना, भगवद्गीता। নমস্কার বন্ধুরা, আকাশবাণী শ্রী বিজয়পুরম কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত। আজ রয়েছে মহিলাদের একান্ত পছন্দের অনুষ্ঠান চিরন্তনী।

0: श्रोताओ, अभी आप बांग्ला कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।

0: नमस्कार। किसानवाणी के आज के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन। किसान भाइयों, हमेशा की तरह हम कार्यक्रम की शुरुआत आज के खूबसूरत विचार से कर रहे हैं। हमारा आज का विचार है, धरती की सबसे शक्तिशाली शक्ति प्रेम है। प्रेम वो शक्ति है जो दिलों को जोड़ती है और दुनिया को बदल सकती है। कठिनाइयाँ क्यों आ रही है, इसका उत्तर हमें आज खोजना होगा। साथियों, कई परेशानियाँ हमारे रास्ते में आती है, हमें ये समझना चाहिए कि ये क्यों एक के बाद एक आ रही है। केवल दुखी होने के बजाय हमें कारण ढूंढना चाहिए, क्यों और कहाँ गलती हुई, ताकि वो दोहराई ना जाए। जैसे जीवन का ब्लैक बॉक्स खोजना, आत्मविश्लेषण ही समाधान की शुरुआत है। साथियों, इसी खूबसूरत विचार के साथ हम प्रारंभ कर रहे हैं आज का ये अंक और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। साथियों, हमारा आज का प्रश्न है, मछली पालन तालाब में पानी की अम्लीयता को कम करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। दो विकल्प भी हम आपको दे रहे हैं, चूना या फिर यूरिया। साथियों, प्रश्न के उत्तर सोचते रहें और कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

साथियों, आइए थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं खेत बचाओ अभियान के बारे में। इस वक्त पूरे देश में भारत सरकार द्वारा खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है साथियों, अगर हम अपनी मिट्टी की सेहत का ख्याल आज नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में हमारी फसलें और मुनाफा दोनों ही कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए वैज्ञानिक सलाह अपनाएं, मिट्टी की जांच करवाएं और सही मात्रा में ही खाद का प्रयोग करें। साथियों, इस अभियान के तहत इस कार्यक्रम में किसानों को संतुलित खाद उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, एकीकृत पोषण प्रबंधन, मृदा नमूना संग्रह तकनीक, मौसम आधारित फसल परामर्श और जल संरक्षण उपायों के महत्व के बारे में भी बताया जा रहा है। तकनीकी विशेषज्ञों ने बताया कि अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग भूमि की उर्वरता को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने जोर दिया कि पोषक तत्वों का प्रयोग केवल मृदा परीक्षण सिफारिशों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। साथ ही किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में भी जानकारी

बताया जा रहा है। तकनीकी विशेषज्ञों ने बताया कि अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग भूमि की उर्वरता को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने जोर दिया कि पोषक तत्वों का प्रयोग केवल मृदा परीक्षण सिफारिशों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। साथ ही किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इस अभियान का हमारे किसान भाई अधिक से अधिक लाभ उठाएं और इस जागरूकता कार्यक्रम में भाग लें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करना है और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। किसान साथियों, ये तो रही थोड़ी बहुत चर्चा खेत बचाओ अभियान पर। अब आइए कार्यक्रम में सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: किसान साथियों, आज हम बात करेंगे टेरेस गार्डन की। बहुत सारे लोगों का कहना रहता है कि हमारे पास ज़मीन नहीं होती है, हम गार्डनिंग कैसे करें, लेकिन आज घर के छत पर टेरेस गार्डन किया जा सकता है। इस बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं बटलाइन की श्रीमती के भानुमती जी, जो टेरेस गार्डन करती है काफ़ी समय से और उससे अच्छा लाभ भी हो रहा है उन्हें। आइए सुनते हैं अपनी बातचीत के माध्यम वो क्या कहना चाहती है।
1: किसान साथियों, आइए आपको मिलवाते हैं भानुमती जी से, जो टेरेस गार्डनिंग करती हैं और ये 5-6 सालों से टेरेस गार्डनिंग करती हैं। तो भानुमती जी, आपके और ये जो फूल पेड़ हैं, इनके बीच में जो रिश्ता बना है वो कैसा है?
2: गार्डनिंग मेरा बहुत इंटरेस्ट है, गार्डनिंग में मेरे को वो बचपन से आया वाला चीज़ है ये
1: जी।
2: तो फादर मदर दोनों फार्मर है और मदर तो अभी भी गार्डनिंग करती है मदर
1: जी।
2: तो, इसलिए मेरे को क्या है, फर्स्ट में फूल पेड़ में ही इंटरेस्ट आया, मेरे को वेजिटेबल्स में उतना इंटरेस्ट नहीं आया था। ये लास्ट 6 ईयर्स का पहले कैरी से एक प्रिंसिपल साइंटिस्ट भास्करन सर ने पूछे थे कि आपको इंटरेस्ट है सुना
1: जी।
2: इस तरह नाबार्ड का एक प्रोजेक्ट है, हम लोग आया इस तरह टेरेस गार्डनिंग को रूफटॉप गार्डन डेवलप करने के लिए, हम लोग एक प्रोजेक्ट है, हम ट्रेनिंग देगा करके बोले
1: जी।
2: थे। फिर सर मेरे घर आए थे, फिर सर ने सीड्स भी लेके आए, सैपलिंग्स भी सारा कुछ दिए थे, फिर ट्रेनिंग भी दिए थे कैसा करना, कैसा सॉइल मिक्स करने के लिए वो ट्रेनिंग
1: जी
2: सर ने दिए थे,
1: जी
2: जैसे सॉइल मिक्स में जैसा कोकोपीट है और गार्डन सॉइल और हम लोग जो वर्मी कंपोस्ट वो सब
1: जी
2: थोड़ा स्टार्टिंग से
1: जी
2: दिए
1: तो ये
2: थे।
1: जो आपने अभी बताया हमें कि सॉइल का जो मिक्सचर आप बनाती हैं, इसको थोड़ा विस्तार से बताइए कि कैसे बनाती हैं।
2: सॉइल बोलने से हम लोग नॉर्मल सॉइल से थोड़ा से ना दिक्कत है, क्यों बोलने से वो रूट थोड़ा से जाने में, टेरेस गार्डन है ना वो पेड़ उतना ताकत से नहीं आएगा,
1: जी
2: इसलिए कोकोपीट बोलने से वो जो नारियल का भूसी रहता है
1: जी
2: तो वो और इक्वल शेयर में करते हैं हम लोग,
1: जी
2: सर ने ऐसे सिखाए थे, इसमें सॉइल और कोकोपीट और हम लोग गोबर ये
1: जी
2: तीनों को जो लीव्स जो सूखा वाला जो पत्तियां हैं वो थोड़ा से बैग के अंदर डाल के ये
1: जी
2: सारा मिक्सिंग करके उसमें डालने के लिए बोले थे।
1: जी
2: ये डाल के तो हम देख के ट्राई करी, उसके बाद में मेरा आउटपुट तो बहुत अच्छा निकला, जैसे सीड्स डालने के टाइम में उसको ग्रो बहुत अच्छा लगा,
1: जी
2: फिर मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ गया उसमें।
1: जी
2: स्टार्टिंग में हम थोड़ा भिंडी लोबिया इस तरह करती थी,
1: जी
2: आजकल मेरा टेरेस गार्डन में तो सारा वेजिटेबल्स है,
1: जी
2: जैसा कि अब पोटैटो छोड़ के जितना वेजिटेबल्स मैक्सिमम है, कैरेट से लेके बीट रूट, कैरेट बीन्स सारा मेलन से जितना कॉलीफ्लावर कैबेज सारा वेजिटेबल्स अभी हम उगा ले, बहुत अच्छे से आ रहा है अभी।
1: तो भानुमती जी, जैसे आपने बताया कि आप हर तरह की गार्डनिंग करती हैं और फूल पेड़ भी हैं, सब्जी वगैरह भी हैं, और आपका एक अनुभव रहा है, तो आप जब दूसरों को सलाह देती हैं तो आप उनको क्या कहना चाहिए, दूसरों को क्या सलाह देना चाहेंगी कि टेरेस गार्डनिंग करना कैसे है, शुरुआत कैसे करें इसे और आगे कैसे बढ़ाएं, इसमें सफल कैसे हों?
2: टेरेस गार्डन का हम थोड़ा आइडिया भी सबको देती है, जैसे कि मेरा चैनल्स भी है उसमें थ्रू से भी थोड़ा सिखाती है और मेरे स्कूल के बच्चों को बहुत सिखाती है, जैसा उनका ऑफ पीरियड मेरा रहता जब बच्चे लोग को पीटी पीरियड्स रहता वो टाइम में बच्चों को लेके थोड़ा से मॉडल स्कूल में है
1: जी
2: बच्चे लोग सारा, फिर बच्चों लोग भी ट्राई करते घर में भी उन लोग, और जितना पौधा छोटा छोटा पौधा इनका अवेलेबल नहीं है करके कंप्लेंट्स है सबको बोलेगी तो थोड़ा से करने के लिए भी कोशिश करते, लेकिन मेरे को पौधा नहीं मिल रहा है कैरी से नहीं मिलता है करके बोले। तब हम ये साल से पूरा शुरू करी कि सारा वेज सैपलिंग्स सारा रेडी करी, हम खुद रेडी करी 1000 से ऊपर सैपलिंग्स, जैसा बैगन का, बैगन हो गया, टमाटर हो गया, कैबेज, कॉलीफ्लावर और सीड्स भी सबको डोनेट करने शुरू करी हम अभी
1: जी
2: अभी। मेरे को अप्रोच जो जो करते उनको आइडिया भी देती है और जैसा करना है लोग देख के भी जाते, सैपलिंग्स भी डोनेट किया है
1: जी
2: अभी बहुत जन मेरे को देख के, हम 100 से भी ज़्यादा, 100 क्या 200 जन के भी ऊपर में आके मेरा गार्डन विजिट किए
1: जी
2: और उन लोग सैपलिंग्स भी लेके गए, उस लोगों सक्सेस भी हुए।
1: जी तो ये जो सैपलिंग्स है, आप इनको तैयार कैसे करती हैं ये थोड़ा बता दीजिए।
2: ये मेरे को सीड्स मेरा ही वेजिटेबल का उसमें एक बैगन होने से एक बैगन को छोड़ देती हूँ, भिंडी बोलने से भिंडी को भी थोड़ा उसको सीड्स बनने के लिए छोड़ती है, फिर सीड्स बनने के बाद उसको ले लेती लेके मेरा नर्सरी प्लांट्स बनाती हम, जैसे कि सो सैपलिंग्स नर्सरी बैग मंगा के ऑनलाइन से उसमें मेरा मिट्टी रेडी करके फिर इसको हम गाड़ते, थोड़ी मेहनत करती है गाड़ के फिर उसको डोनेट करती है,
1: जी
2: फिर हम सिखाती भी है।

0: उनको जैसा आते है का, उन लोग को कोशिश करती है कि अंडमान में सब लोग थोड़ा ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स खाने से अच्छा है।
1: जी
0: जैसे कि इनको मन में है कि अंडमान इतना हैवी रेन है इसलिए सब्जी नहीं होएगा सोचते थे, लेकिन
1: जी
0: लेकिन मेरा 12 महीना मेरे घर में टमाटर होता है,
1: जी
0: ताकि बारिश में मेरे को थोड़ा से साइड में वरंडा का तरह जगह में करती है टमाटर के लिए काली।
1: जी
0: बाकी कैबेज एक सीजन रहता है, जैसे अक्टूबर से लेके आपको अप्रैल तक कैबेज आता है, कॉलीफ्लावर और कैबेज, और बाकी सारा वेजिटेबल्स आपको 12 महीना भी उगा सकते हैं। वो हम तो उगाती है, 6 साल से वेजिटेबल्स नहीं करी थी, एक
1: जी
0: 90% वेजिटेबल्स मेरे घर से ही होता है।
1: जी
0: से खाली ये बड़ा प्याज खाली हम थोड़ा खरीदना पड़ता,
1: जी
0: और मेरे को पोटैटोस खरीदना पड़ता, बाकी
1: जी
0: कोई वेजिटेबल्स हम नहीं खरीदती।
1: जी
0: तो ये चीज़ हम सबको बोलती भी जाती है, बच्चों को भी सिखाती है, ताकि अंडमान में केमिकल फ्री वेजिटेबल्स सभी खाना है।
1: बिल्कुल
0: ये मेरा थोड़ा से कोशिश में लगी है,
1: जी
0: आगे भी हम करते रहेगी।
1: जी बिल्कुल। तो हम ये जानना चाहेंगे भानुमति जी, जैसे आप जो पॉट यूज़ करती हैं, कभी कभी पॉट छोटे होते हैं ना, तो आप बैग में करती होंगी, लेकिन बैग तो स्थिर नहीं रहता है, फिर आप कैसे मेंटेन करती हैं उनको, बनाती कैसे हैं?
0: हम करती है तो ऑनलाइन से थोड़ा ग्रो बैग मंगाती है,
1: जी
0: और ज़रूरी नहीं है ऑनलाइन से मंगाना करके। हम लोग जो वेजिटेबल्स बॉक्स मिलता है, जो टमाटर सब मेलन से आता वाला, हम लोग वेजिटेबल मार्केट जाने से उन लोग वेस्ट फेंक देते हैं, उन लोग डस्टबिन में डाल
1: जी
0: देते, वो बैग लेके आके हम लोग उसमें पॉलिथीन का तरह बिछा के उसमें हम लोग कर सकते। वो बहुत अच्छा से आता है, वो स्ट्रांग भी रहता है, और उससे वेस्ट मटेरियल का यूज़ भी हो गया, और आपको आराम से उसको स्पेस भी ज़्यादा मिलेगा, और आपको शिफ्ट करने में भी ईजी रहेगा। जैसे
1: जी
0: बालकनी में भी रख सकते हैं आप, टेरेस गार्डन नहीं वाले लोग बोलते हैं कि हम, मेरे पास टेरेस गार्डन नहीं है,
1: जी
0: अंडमान का रेन का जैसे सब शीट डाल के रखे ना, तो आप बालकनी में रख सकते हैं। मेरा घर में
1: बिल्कुल
0: विजिट करने से मालूम होएगा, हम बालकनी में ही भी बहुत कुछ रखा है, टेरेस गार्डन में ऊपर में भी रखा, जैसे वरंडा में भी रख सकते, कहीं भी रख सकते हैं आप, अच्छे से आता है। ऐसा नहीं कि 6 साल से बोलती ना, हम इतना वेजिटेबल्स हम उगाई और बोल नहीं सकता उतना आया
1: जी
0: है।
1: अब जैसे कि आप इस पॉट में या जो बैग है जिसमें आप वेजिटेबल्स उगाती हैं, उनमें कभी कभी आपको ऑर्गेनिक खाद भी डालना पड़ता है, तो किन अंतरालों में आप डालती हैं, कैसे करती
0: हाँ
1: हैं?
0: जरूर, तो वेजिटेबल ऑर्गेनिक खाद तो डालना ही है,
1: जी
0: ऑर्गेनिक मैन्योर आजकल एग्रीकल्चर से भी मिलता है,
1: जी
0: हम तो गोबर यूज़ करती थी,
1: जी
0: और अभी तो लेटेस्ट में अभी तो हम लोग गवर्नमेंट में ही में देते कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसके लिए कोशिश करके ऑर्गेनिक मैन्योर भी रेडी करते हैं लोग, अभी सारा जगह में अभी बांटते भी है, अभी हम भी कोशिश करके हम जाके पूछी तो मेरे को भी दिए। इसलिए आप लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से अप्रोच कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर मिलता है, गोबर जिसको नहीं मिलता आप लोग जाके वहाँ से ले सकते
1: ले
0: हैं।
1: सकते हैं। और कितने अंतराल में आप इसे, जैसे हमारे जो पौधे होते हैं ना, उनको न्यूट्रिशंस
0: जरूर
1: की ज़रूरत होती है, तो कब कब आप उनका जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए उनमें खाद कब कब आप चेंज करती हैं या ऐड करती हैं, कैसे
0: ओ,
1: करती
0: हम
1: हैं?
0: लोग ना एक 10 दिन 15 दिन हम लोग को मालूम होएगा थोड़ा ग्रो कैसा लगता, तो ग्रो कम होने का टाइम है, आप थोड़ा मिट्टी मिला के देख के अब ये खाद थोड़ा से डाल देने से बस है। और वेजिटेबल वेस्ट हम लोग को जो यूज़ करते हैं, मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं उसको, आप थोड़ा मिट्टी में कोत के वही पॉट के अंदर ही, तो एक साइड में डाल के मिट्टी को भर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली सड़ के वो पेड़ के लिए ताकत मिल जाएगा। इस तरह
1: जी
0: ऑर्गेनिक हम लोग वेजिटेबल्स वेस्ट को फेंकना नहीं, उसमें
1: जी
0: से ज़रूर न्यूट्रिशंस मिल जाएगा,
1: जी
0: क्यों बैग में रखने से और न्यूट्रिशन हम ही लोग देना पड़ेगा,
1: जी
0: क्यों
1: बिल्कुल
0: नीचे तो कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग ऐड करें 15 डेज वंस देने से भी बस है, और थोड़ा मिट्टी मिला के देना बस, उसमें डाल देने से आपको आ जाएगा।
1: जी अब बात करते हैं बीजों की। बीज तो आप खुद दूसरों को डोनेट करती हैं, लेकिन अगर कोई आपसे, जैसे आपने जब शुरुआत की होगी तो आपको बीजा कहीं से मिला होगा, या बहुत आपने अभी तक पता किया होगा कि कहाँ कहाँ से लोग बीजे इकट्ठे कर सकते
0: करते
1: हैं, तो आपकी तरफ से क्या राय आप देंगी, जिनको बीज की ज़रूरत होगी तो कहाँ कहाँ से वे ले सकते हैं बीज?
0: जरूर, मेरे को तो कैरी से मिला सर, प्रिंसिपल साइंटिस्ट मेरे को जो ट्रेनिंग दिए थे ना
1: जी
0: भास्करन सर, अभी भी मेरा कांटेक्ट है, सर तो बेंगलुरु में रहते हैं, अभी भी कांटेक्ट, कोई आने से मेरे को बीज बेचते, अभी मेरा पसुमे विगडम करके चेन्नई से अभी आए थे, उनको मालूम है कि हम ऑर्गेनिक करती है करके, तब तमिलनाडु से भी मेरे को भेजे कि सबको डोनेट करने के लिए,
1: जी
0: तो आज भी कल आज भी मेरे को मिला है,
1: जी
0: मम्मी के घर से लेके आके दिए थे।
1: जी
0: जैसे कि कैरी अप्रोच कर सके नहीं, अगर वहाँ से नहीं मिलने से बाजार में हम लोग मार्केट में मिलता है, जैसे कि गार्डनिंग हम किचन गार्डन के लिए छोटे छोटे पैकेट्स ना हम लोग बाजार में, जैसे सब्जी मार्केट सब है ना, वहाँ
1: जी
0: में भी वेजिटेबल सीड्स का
1: मिल
0: दुकान
1: जाए।
0: है, वहाँ में आजकल देते हैं, आजकल ना गार्डन का सब देते हैं, किचन गार्डन का सारा जन देते हैं, वहाँ में अप्रोच कर सकते, कैरी से कर सकते, नहीं उनसे वहाँ में कर सकते, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी कर सकते,
1: जी
0: हर जगह में हम लोग को आजकल फैसिलिटीज है।
1: जी तो अब हम आपसे और

0: जानना चाहेंगे कि देखिए गार्डनिंग में भी मेहनत लगती है और उसे बच्चे की तरह आपको संभालना पड़ता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे?
1: फर्स्ट थिंग तो इंटरेस्ट रहना है कि दिमाग में रहना है कि हमको ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स खाना ही है, तब तो मेहनत करना ही पड़ेगा।
0: जी
1: जो थोड़ा सा मेहनत करने से हम लोग जो हॉस्पिटल घूमते हैं, कितना लोग घूमते हैं हम देखते हैं, तो वो मेहनत से ज़्यादा ये मेहनत बहुत, ये इंटरेस्ट भी रहेगा। आप लोग करते करते एक वेजिटेबल्स आ गया, एक ग्रो हो गया, एक फल आता, तो आपको इतना इंटरेस्ट, इतना खुशी होएगा आपको, और आपको एक पीस माइंड भी हो जाएगा। जैसे कि आपको टाइम जब जब मिलता है, ऐसा नहीं कि हम लोग 24 आवर्स काम तो नहीं करते।
0: जी
1: शाम ड्यूटी से मेरा लेने से, मेरे ड्यूटी से हम आती है 3:30 तक पहुँचेगी हम। पहुँचने से हम पहले ही बैग वग डाल देगी, तुरंत हम मेरा टेरेस गार्डन ही भागेगी। बारिश का टाइम होने से पानी देने का जरूरत नहीं पड़ेगा,
0: जी
1: लेकिन धूप काल में तो जरूर पानी
0: देना
1: देना है।
0: है।
1: शाम को मेरा ड्यूटी रहता है, 4:00 शुरू कर देती, फिर जो जो मिट्टी चढ़ाना, खाद चढ़ाना और पेस्ट कंट्रोल भी करना पड़ता है उसमें, हम नीम ऑयल वो सब नेचुरल में ही करती है, उसको स्प्रे करना कभी कभी, वो हमें देखने से मालूम हो जाएगा, डिफरेंस मालूम हो जाएगा। तो उस
0: जी
1: तरह करके हम स्प्रे करके वही 2 आवर्स हम लोग एक दिन में स्पेंड करने, करना
0: जी
1: जरूर करने से आपको आउटपुट मिलेगा।
0: जी और चलते चलते आप ये जो नई युवा पीढ़ी है और जो बच्चे हैं और जो अभी घर पर बेरोजगार हैं जिनको इंटरेस्ट है, इन सबको आप अपनी ओर से क्या राय देंगी इस बारे में?
1: हम लोग अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ये एक टास्क है, बोलने से वेजिटेबल्स ऑर्गेनिक मिलते ही नहीं है, ऊपर से हेवी रेन है, वेजिटेबल्स हम लोग सारा मेलैंड से खरीदना पड़ता है और महंगाई भी ज़्यादा है। देखिए,
0: जी
1: 1 किलो टमाटर लेने में कभी कभी 200 भी चले जाता है, बैगन 200 रुपया भी बिक्री होता है, लेकिन सही बोलने से हमको मार्केट रेट नहीं पता, सब लोग बोलता वाला हम सुनती है,
0: जी
1: इसलिए आप लोग कोशिश करना जरूरी है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए। जरूर आप लोगों सब मिल के, कैसे भी हम सब्जी उगाना है करके एक, तो हम तो बोलती है वेजिटेबल्स मिलता है, ये सीड्स मिलता है, सारा जगह मिलता है, आप लोग कोशिश करना है। बच्चों लोग भी आजकल बच्चे, इसलिए हम ये चीज़ स्कूल में शुरू करी,
0: जी
1: इसलिए हम लोग का सारा एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इसमें जोर देता है, और हम लोग स्कूल में ये चीज़ शुरू किया कि आने वाला पीढ़ी को जरूर ये कैसा वेजिटेबल, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हम लोग उगा के खा सकते बिना दवाई का,
0: बिल्कुल
1: तो बीमारी भी कम हो जाएगा
0: जी
1: और स्वाद भी अच्छा रहेगा, बच्चे लोग
0: जी
1: भी ज़्यादा खाएंगे।
0: जी
1: तो इसलिए आने वाला समय में जरूर सब लोग, पेरेंट्स क्या करना, आप लोग वेजिटेबल ट्राई करिए गार्डनिंग के लिए, पर से बच्चों को साथ में ले
0: जी
1: लीजिए,
0: उनको भी सिखाना
1: उनको
0: है।
1: सिखाना जरूरी है। आप 2 साल का बच्चा अगर मत छोड़िए, उनको भी लेके जाइए, 3 साल का बच्चों को भी लेके जाइए।
0: जी
1: तो फॉरेन में सब उसी तरह करते हैं, चाइना में सब छोटे छोटे किंडर गार्डन में सब बच्चे लोग खुद उगाते,
0: जी
1: तो आप लोग भी लेके जाइए, मिट्टी में छोड़ना नहीं छोड़ना ऐसा सब नहीं करना, बच्चों को लेके जाना साथ में, क्यों हम लोग को ये चीज़ हम लोग बचपन में फादर मदर करते थे, तब
0: जी
1: उसको हम लोग देख के, हम लोग नहीं करें लेकिन देखे, देने के बाद एक 10 साल हम लोग उम्र आने के टाइम फूल पेड़ गाड़ने का इंटरेस्ट आया मेरा, वो चीज़ मेरा माइंड में था कि वो टाइम देखा करके आज हम ये आज कर पाती है,
0: जी
1: इसलिए हम मैक्सिमम बच्चों के ऊपर ही हम ध्यान देती है। इसलिए
0: जी
1: पेरेंट्स भी रिक्वेस्ट करती है, आप लोग भी करिए साथ में, आपको बच्चों को भी लेके जाइए,
0: जी
1: ट्राई करिए, एक बार नुकसान होएगा, 2 बार होएगा, 3रा बार होएगा, फिर आप लोग उसे ऑनलाइन में बहुत कुछ मिलता है, आप लोग देखिए उसमें, आप फिर आप लोग ट्राई करिए, सक्सेस कर
0: जी
1: सकते।
0: तो भानुमति जी, आपने इतनी सारी बातें हमें बताई, आपने अपना वक्त दिया, आपको धन्यवाद।
1: धन्यवाद, आप लोग बुलाए थे, ये चीज़ मेरे को बहुत इंटरेस्ट वाला भी चीज़ भी है। हमको क्या अंडमान निकोबार आइलैंड को केमिकल फ्री वेजिटेबल्स मिलने, कैसा भी अपना अपना उगा के खा सकते, जिस सबको बस जगह नहीं होने से भी, जिसका बस ओन घर है, ओन जगह है, उस लोग कर सकता है। हम लोग
0: जी
1: ज़्यादातर मेलन से मंगा के नहीं खाएंगे और हम लोग पैसा भी बचाएंगे और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स खाएंगे। थैंक यू।
0: धन्यवाद।
2: किसान साथियों, अभी आप टेरेस गार्डन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल कर रहे थे। बता रही थी बट लाइन की श्रीमती के भानुमति। उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो जो बातें आपको बताई कि किस तरह से अपने टेरेस पर गार्डनिंग करके आप अपने घर के जो ज़रूरतें होती है उसको पूरा कर सकते हैं, फूलों को भी सजा सकते हैं, फल भी लगा सकते हैं, सब्जियाँ भी लगा सकते हैं और बहुत कुछ कर महिलाएँ अपने जो छोटे मोटे जो व्यवसाय है उसको कर करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकती है।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: किसान साथियों, अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। हमने आपसे पूछा था, मछली पालन तालाब में पानी की अम्लीयता को कम करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है। दो विकल्प भी हमने आपको दिए थे, चूना या फिर यूरिया। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है मछली पालन तालाब में पानी की अम्लीयता को कम करने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों ने अपने उत्तर की जांच कर ली होगी। भाइयों, इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
1: श्रोताओं, अभी आप किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम महफिले कवाली। श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में ये कवाली। फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथनी, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और बोल है आनंद बख्शी की।

श्रोताओं, आप सुनते हैं फिज़ा फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है कादर गुलाम मुस्तफ़ा, मुताज़ गुलाम मुस्तफ़ा, एआर रहमान और श्रीनिवास ने। संगीत से सजाया है एआर रहमान ने और रचना की है शौकत अली ने।

कृष्णा विजेता और श्रद्धा पंडित की स्वर में ये गीत। फिल्म का नाम है दीवार। धुन तैयार की है आदेश श्रीवास्तव ने। रचनाकार है नुसरत बदर।

श्रोताओं आइए सुनते हैं एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश के एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट करने के लिए बच्चों को दिया जाता है। नामांकन हेतु अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://award.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। श्रोता हमारी अगली पेशकश है फिल्म मुगले आजम से ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर, शमशाद बेगम उनके साथियों ने, संगीतबद्ध किया है नौशाद ने और बोल लिखी है शकील बदायूं ने।

श्रोताओं, आप सुनते हैं सोनू निगम, अलका याग्निक, तौशीफ अख्तर और सबरी ब्रोस की आवाज़ों में ये गीत। धुन है नदीम श्रवण की, बोल है समीर की और फिल्म का नाम है ये दिल आशिकाना।

श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारा आज का महफिले कवाली कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज व कल के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर बाद फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया आप सुन पाएंगे 7:20 पर। सात बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम यू वार्निंग। रात्रि 8 बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला। 8:30 पर रोजगार समाचार, तत्पश्चात सुनेंगे गौरव गान।

FM 100.9 MHz पर रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत, जिसे हम विविध भारती FM मुंबई से रिले करेंगे। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज़ एट 9, 9:30 पर कंट्री वाइड, 9:45 पर इनसाइट और 10 बजे फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम संदेशे आते हैं आप सुन पाएंगे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल प्रातः 5:25 पर, 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। एग्री टिप्स कार्यक्रम होगा कल प्रातः 5:55 पर। जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुनिए 6:10 पर। 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा बच्चे शीर्षक से।

रामचरितमानस गान सुनिए 6:30 पर। 6:50 पर मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा। FM 100.9 MHz पर 7:15 पर आप प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए भूले बिसरे गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। सात बजकर पंद्रह मिनट पर देशभक्ति गीतों

0: 7:15 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा देश रागिनी। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का समय रहेगा 7:30 पर। सुबह 8:30 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में आप विभिन्न कलाकारों को सुन सकते हैं। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:05 होने वाले हैं। अब से कुछ ही क्षणों में प्रादेशिक समाचार बुलेटिन सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों के सामूहिक प्रयासों पर बल दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल मंच के रूप में विकसित करने का आह्वान किया। राजधानी श्री विजयपुरम में CGHS आरोग्य केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर सांसद ने नई दिल्ली में मुद्दा उठाया और खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत SHG और FPO को सशक्त बनाकर ग्रामीण आजीविका और कृषि उद्यमिता पर सम्मेलन आयोजित किया गया।

सांध्य समाचारों के साथ मैं जीनत बीबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए यह पहल शुरू की गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांध कर रखे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे आज उपलब्ध है, उनका उपयोग करें। स्थानीय कला, संस्कृति, खान पान को आगे लाने के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएं। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बनाकर आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। मुख्य सचिव के निर्देश अनुसार, जिसमें आपदा प्रबंधन की तैयारियों को सुदृढ़ करने और अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए सभी विभागों में मासिक आपदा पूर्वाभ्यास आयोजित करने को कहा गया है। इसके अंतर्गत जहाजरानी सेवा निदेशालय ने आज मरीन डॉकयार्ड श्री विजयपुरम में भूस्खलन परिदृश्य मॉक ड्रिल का आयोजन किया। यह अभ्यास DSS के आपदा प्रबंधन नोडल अधिकारी की देखरेख में आयोजित किया गया। मॉक ड्रिल में मरीन डॉकयार्ड स्थित डॉकयार्ड

और कैंटीन, मोल्डिंग शॉप, ब्लैक स्मिथ शॉप तथा मरीन डिस्पेंसरी के कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। अभ्यास के दौरान एक घायल व्यक्ति सहित कुल 55 कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर सफलतापूर्वक निकाला गया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मैक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। यह टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समय अनुसार यह मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा। फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही है। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। यह विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल है। प्रादेशिक समाचार अब आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, सांसद और खेत बचाओ अभियान। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद रे ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना आरोग्य केंद्र मुख्यालय के निदेशक डॉ. सतीश से मुलाकात कर राजधानी श्री विजयपुरम में काफी समय से लंबित CGHS वेलनेस सेंटर की स्थापना और संचालन के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की मांग की। बैठक के दौरान CGHS निदेशक ने सांसद को बताया कि श्री विजयपुरम में CGHS वेलनेस सेंटर स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव पर मुख्यालय स्तर पर आवश्यक अनुशंसाओं के साथ कार्रवाई पूरी कर ली गई है। इसके बाद सांसद ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कर्मचारी स्वास्थ्य योजना प्रभाग से भी प्रस्ताव की, वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त की। मंत्रालय ने बताया कि उपलब्ध संसाधनों के भीतर अंडमान एवं निकोबार प्रशासन में CGHS केंद्र स्थापित करने के संबंध में प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। राज्य पुस्तकालय श्री विजयपुरम द्वारा आयोजित समर बुक फेस्ट 2026 का समापन समारोह कल राज्य पुस्तकालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित किया जाएगा। समारोह के दौरान समर बुक फेस्ट 2026 के विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। समर बुक फेस्ट 2026 के माध्यम से बच्चों एवं युवाओं में पठन पाठन की रुचि विकसित करने तथा साहित्यिक एवं रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। देशव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान श्री विजयपुरम ने आज दक्षिण अंडमान के स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठनों तथा प्रगतिशील किसानों के लिए संतुलित उर्वरक उपयोग विषय पर सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 85 प्रतिभागियों ने भाग लिया। नाबार्ड के सहायक महाप्रबंधक आलोक नाथ पुष्पक ने किसानों को मजबूत FPO गठित करने और संस्थागत ऋण व सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। वहीं कैरी के निदेशक डॉ. जयेश सुंदर ने सामूहिक उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को किसानों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बताया। उन्होंने वर्जिन नारियल तेल, दालचीनी, केला, कटहल और टूना आधारित उत्पादों की ब्रांडिंग एवं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से विपणन पर जोर दिया। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम द्वारा कल शाम 5:30 बजे से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम का विषय रहेगा तनाव के कारण दांत पीसना। इस अवसर पर दंत शल्य चिकित्सक और शोध वैज्ञानिक डॉक्टर दिलप्रीत कौर दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर देंगी। दर्शक फोन संख्या 2447-45 और 2456-62 पर कॉल कर कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। अंडमान एवं निकोबार राज्य ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित 10वीं परिचय मेमोरियल राज्य ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 23 से 26 जून तक श्री विजयपुरम में किया जाएगा। प्रतियोगिता के तहत विभिन्न आयु वर्गों तथा सीनियर वर्ग, पुरुष एवं महिला की स्पर्धाएं शामिल है।

इन वर्गों में एकल युगल और मिश्रित युगल मुकाबले खेले जाएंगे, जबकि अंडर 11 और अंडर 13 वर्ग में एकल एवं युगल स्पर्धाएं आयोजित होंगी। बैडमिंटन खिलाड़ियों, शैक्षणिक संस्थानों तथा विभिन्न संगठनों से प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई है। भाग लेने की अंतिम तिथि 22 जून है। अधिक जानकारी के लिए 9434280768 पर संपर्क कर सकते हैं। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध अंडमान एवं निकोबार ग्रुप सी मेडिकल एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने अपने संगठन के पुनर्गठन की घोषणा की है। संघ के महासचिव नारायण मिस्त्री ने इस संबंध में जानकारी दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों के सामूहिक प्रयासों पर बल दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल मंच के रूप में विकसित करने का आह्वान किया। राजधानी श्री विजयपुरम में CGHS आरोग्य केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर सांसद ने नई दिल्ली में मुद्दा उठाया और खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत SHG और FPO को सशक्त बनाकर ग्रामीण आजीविका और कृषि उद्यमिता पर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी काशी विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:15 हुए हैं। श्रोताओं अब सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। सबसे पहले सुनते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार जन सेवाओं को परसों तक के मौसम संबंधी पूर्व अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने तथा हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलने की आशंका बताई गई है। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में यह बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण अंडमान सागर और उसके आसपास के क्षेत्रों में हवा की गति 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जो कि बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे भी हो सकती है। मछुआरों को यह सलाह दी जाती है कि वह 14 जून तक समुद्र में न जाएं। ये थी मौसम की जानकारी। श्रोताओं अब सुनते हैं जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाज रानी सेवा में निर्देशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी कमोटा शाही द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और इसकी वापसी उसी दिन सुबह 8:30 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी पिलोमिलो शाही द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 2:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी उसी दिन शाम 4:30 पर श्री विजयपुरम से होगी। एमवी हडबे स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर शनिवार 13 को सुबह 6:00 श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी उसी दिन दोपहर 12:00 उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर शनिवार 13 को सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उसी दिन सुबह 8:45 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटंग शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कमोटा और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर शनिवार 13 को

सुबह 7 बजे श्रीविजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी रविवार 14 तारीख को 7 बजे उन्हीं मार्गों से होते हुए श्रीविजयपुरम के लिए होगी। एम वी सेंटिनल लिटिल अंडमान कार निकोबार चौरा तेरेसा कचाल और ननकौरी होते हुए कैमल बी की यात्रा पर 25 तारीख को सवेरे 7 बजे श्रीविजयपुरम से छूटेगा और इसकी वापसी 28 तारीख को रात्रि 8:30 पर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्रीविजयपुरम के लिए होगी। एम वी स्ट्रेट आइलैंड माया बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्रीविजयपुरम से छूटेगा। जलयान इनकी वापसी अगले दिन 13 तारीख को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से माया बंदर होते हुए श्रीविजयपुरम के लिए होगी। एम वी कैमल बे लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल रात 9 बजे श्रीविजयपुरम के लिए छूटेगा और इसकी वापसी 13 तारीख को सवेरे 10 बजे लिटिल अंडमान से श्रीविजयपुरम के लिए होगा। ये थी जलानों का यात्रा कार्यक्रम। श्रोताओं आइए सुनते हैं एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश के एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम के बच्चों को असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता समाज सेवा पर्यावरण खेल कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा खेल केंद्र ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। श्रोताओ अभी आप मौसम की जानकारी जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्रीविजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7:21 हुए हैं। श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं दिलेर मेहंदी और ममता झरमा की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है मिले ना मिले हम। बोल है जावेद अख्तर के। संगीत से सजाया है साजिद बाजिद ने।

अब सुनिए डबल धमाल फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है रितु पाठक व उनके साथी। गीत व संगीतकार है आनंद राज आनंद।

अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का शिवविजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

0: युवावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। दोस्तों, यह पंक्ति हमें परिस्थितियों के सामने घुटने टेकने के बजाय उनसे लड़ने की प्रेरणा देती है। हमें भविष्य की चिंता में अपना आज बर्बाद नहीं करना चाहिए। आज की मेहनत और सही समय पर लिया गया फैसला हमारी आने वाली तकदीर को पूरी तरह बदल सकती है। इसी विचार के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज गुरुवार है और हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम
1: पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार।
0: दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी वो वीर थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। उनके सीने में देशभक्ति की ऐसी लौह जल रही थी जिसके आगे अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां और अत्याचार भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, साहस की आवाज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। बचपन से ही वे तेजस्वी, जिज्ञासु और साहसी स्वभाव के थे। उनके माता पिता ने उनमें अच्छे संस्कार का विकास किया। विद्यालय में पढ़ते समय उन्होंने अनेक देशभक्तों की कहानियां सुनी जिनसे उनके मन में मातृभूमि के प्रति प्रेम जागृत हुआ। उस समय भारत अंग्रेजों के शासन में था और देशवासियों को अनेक प्रकार के अत्याचार सहने पड़ते थे। यह देखकर बिस्मिल का हृदय व्यतीत हो उठता था। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए जीवन समर्पित करेंगे। धीरे धीरे वे साहित्य, कविता और राष्ट्रवादी विचारों की ओर आकर्षित हुए। उनकी रचनाओं में देशभक्ति और साहस की भावना स्पष्ट दिखाई देती थी। यही भावना आगे चलकर उन्हें स्वतंत्रता संग्राम का महान सेनानी बनाने वाली थी। दोस्तों, युवावस्था में बिस्मिल ने महसूस किया कि केवल भाषाओं और याचिकाओं से अंग्रेज भारत नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए उन्होंने क्रांतिकारी मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। वे समान विचारधारा वाले युवाओं के संपर्क में आए और देश की स्वतंत्रता के लिए संगठित प्रयास करने लगे। उनकी मुलाकात उनके क्रांतिकारियों से हुई जिनके साथ मिलकर उन्होंने स्वतंत्रता की योजनाएं बनाई। बिस्मिल एक कुशल संगठनकर्ता थे। वे युवाओं को प्रेरित करते और उनमें साहस का संचार करते थे। उनका मानना था कि देश के लिए त्याग और बलिदान आवश्यक है। उन्होंने अपने लेखों और कविताओं के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य किया। उनके विचार ने अनेक युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन से

जोड़ दिया। धीरे धीरे उनका नाम अंग्रेज सरकार के लिए चुनौती बन गया। दोस्तों, सन 1925 में बिस्मिल और उनके साथियों ने अंग्रेजी शासन को चुनौती देने के लिए काकोरी ट्रेन एक्शन की योजना बनाई। क्रांतिकारियों को अपने आंदोलन के लिए धन की आवश्यकता थी, इसीलिए उन्होंने सरकारी खजाने को निशाना बनाया। यह कार्य अत्यंत जोखिमपूर्ण था, लेकिन बिस्मिल ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। योजना सफल रही, परंतु बाद में अंग्रेज सरकार ने व्यापक जांच शुरू कर दी। कई क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए, बिस्मिल भी पकड़े गए, किंतु उन्होंने अपने साथियों का मनोबल कभी कम नहीं होने दिया। जेल में रहते हुए भी वे देशभक्ति की कविताएं लिखते रहे। उनके शब्दों में इतना जोश था कि सुनने वालों के हृदय में स्वतंत्रता की लौह प्रज्वलित हो उठती थी। उनका साहस आज भी युवाओं को प्रेरणा देता है। दोस्तों, काकोरी कांड के मुकदमे में अंग्रेज सरकार ने बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई। यह समाचार सुनकर पूरे देश में शोक और आक्रोश फैल गया, लेकिन बिस्मिल ने इस निर्णय का सामना अत्यंत धैर्य और साहस के साथ किया। उन्होंने कहा कि यदि उनका बलिदान देश की स्वतंत्रता के मार्ग को प्रशस्त करता है तो यह उनके लिए गर्व की बात होगी। फांसी से पहले भी वे देशभक्ति के गीत गाते और अपने साथियों को प्रेरित करते रहे। उन्होंने मृत्यु को अंत नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च अवसर माना। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा देश प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्म और त्याग में दिखाई देता है। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। दोस्तों, आज स्वतंत्र भारत में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम साहस, देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। उनकी कविताएं और विचार आज भी युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने दिखाया कि दृढ़ संकल्प और निस्वार्थ भावना से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। आधुनिक पीढ़ी उनके जीवन से साहस, अनुशासन और देश के प्रति समर्पण की सीख ले सकती है। बिस्मिल की विरासत केवल इतिहास की पुस्तकों तक सीमित नहीं, बल्कि वह हर भारतीय के हृदय में जीवित है। जब भी देशभक्ति और बलिदान की बात होती है, उनका नाम सम्मानपूर्वक लिया जाता है। वे वास्तव में साहस की वह आवाज थे जिसने लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की

0: दोस्तों, जीवन में स्वस्थ रहना सिर्फ एक इच्छा नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की सबसे पहली और सबसे बड़ी जरूरत है। कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। इसका मतलब है कि दुनिया के सारे सुख आराम एक तरफ और स्वस्थ शरीर का सुख एक तरफ। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण जिंदगी में योग हमारे लिए सिर्फ एक व्यायाम नहीं, बल्कि स्वस्थ और सुखी जीने की एक कला है। योग हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में पिरोता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको सुनवाते हैं रूपक योग, तन मन और आत्मा का संगम।
1: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां तन थका हुआ है, मन भटका हुआ है और आत्मा कहीं खो सी गई है, वहीं एक शाश्वत भारतीय परंपरा हमें फिर से जोड़ने का मार्ग दिखाती है। यह परंपरा है योग। योग न केवल एक व्यायाम पद्धति है, बल्कि यह एक जीवन शैली है, दर्शन है, अनुशासन है और सबसे बढ़कर यह आत्म साक्षात्कार की यात्रा है। योग का मूल उद्देश्य है तन, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करना, उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ना। योग शब्द संस्कृत धातु यज से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या एकीकृत करना। योग का तात्पर्य है व्यक्ति की चेतना को ब्रह्म चेतना से जोड़ना, शरीर को मन से और मन को आत्मा से जोड़ना।

छोड़ना, यह केवल शरीर को लचीला और मजबूत बनाने की तकनीक नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो अंततः आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। योग की उत्पत्ति भारत में हजारों वर्ष पहले हुई थी। ऋषियों, मुनियों और साधकों ने गहन तपस्या और ध्यान द्वारा इसे खोजा और जीवन का हिस्सा बनाया। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी योग के संकेत मिलते हैं। पतंजलि योग सूत्र, भगवद गीता और उपनिषद योग के दार्शनिक पहलुओं पर गहराई से प्रकाश डालते हैं। पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र योग का सर्व प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इसमें योग को चित्त वृत्ति निरोध कहा गया है, अर्थात योग मन की चंचल वृत्तियों को रोकने का साधन है। अष्टांग योग यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की संकल्पना भी पतंजलि ने ही दी थी। मानव शरीर एक अद्भुत यंत्र है जिसे सही ढंग से चलाने के लिए संतुलन, लचीलापन और सहनशक्ति आवश्यक है। योगासन शारीरिक अंगों को मजबूती प्रदान करते हैं, रक्त संचार को सुचारू बनाते हैं, पाचन को सुधारते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। आज की जीवन शैली में घंटों कंप्यूटर पर बैठना, मोबाइल पर झुकना और व्यायाम की कमी से शरीर में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे पीठ दर्द, मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि। योगासनों के नियमित अभ्यास से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन, त्रिकोणासन, वज्रासन जैसे योगासन न केवल शरीर को चुस्त दुरुस्त रखते हैं बल्कि आंतरिक अंगों की कार्यक्षमता को भी बढ़ाते हैं। तनाव, चिंता, अवसाद, क्रोध, ईर्ष्या और अनिश्चितता ये आज के युग की सामान्य मानसिक समस्याएं बन चुकी हैं। इनमें न केवल मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है बल्कि ये शारीरिक बीमारियों का भी कारण बनती है। योग मन को स्थिरता प्रदान करता है। प्रत्येक श्वास को जागरूकता से लेना और छोड़ना, मन को वर्तमान क्षण में टिकाना, यही ध्यान यानी मेडिटेशन का सार है। ध्यान के माध्यम से मन की उलझने सुलझती है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, चंद्रभेदी और कपालभाति जैसे प्राणायाम मन को शीतलता देते हैं और ध्यान की स्थिति में पहुंचने में सहायक होते हैं। हमारी आत्मा शांत, स्थिर, आनंदमय और दिव्य है, लेकिन सांसारिक इच्छाएं, अहंकार और भ्रम इसकी पहचान को ठग देते हैं। योग हमें आत्मा से जोड़ता है। जब मन शांत होता है और शरीर स्वस्थ, तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। यह वही स्थिति है जिसे समाधि कहा गया है, आत्मा के साथ पूर्ण एकत्व। योग आत्मानुभूति का माध्यम है। यह अहंकार से परे जाकर उस सार्वभौमिक ऊर्जा से जोड़ता है जिसे हम ब्रह्म, परमात्मा या ईश्वर कहते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति ना तो सुख में डोलता है ना ही दुख में बिखरता है, वह समभाव को प्राप्त करता है। आज के समय में जहां तकनीक ने हमें बहुत

कुछ दिया है, वहीं मानसिक अस्थिरता, अकेलापन और अवसाद जैसी समस्याएं भी बढ़ी हैं। ऐसे समय में योग एक आदर्श समाधान प्रस्तुत करता है। विश्व भर में अब लोग योग की महत्ता को समझने लगे हैं। हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना इस बात का प्रमाण है कि योग ने केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में हजारों योग सेंटर्स हैं जहां लाखों लोग योग को अपनाकर अपने जीवन को स्वस्थ और संतुलित बना रहे हैं। अक्सर लोग योग को सिर्फ कुछ आसनों तक सीमित समझते हैं, लेकिन योग समग्र जीवन शैली है। यह हमें संयम, सादगी, संतुलन और आत्मनियंत्रण सिखाता है। योग का अभ्यास केवल मैट पर 30 मिनट बिताना नहीं है, बल्कि यह पूरे दिन अपने विचारों, आचरण, आहार और व्यवहार पर सजग रहने की कला है। योग कहता है, सत्य बोलो, अहिंसा का पालन करो, संतोष रखो, स्वच्छता अपनाओ, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को जीवन में उतारो। ये सब यम और नियम के अंग हैं जो योग की नींव है। विज्ञान ने भी योग के लाभों को प्रमाणित किया है। अनेक वैज्ञानिक शोधों से यह सिद्ध हुआ है कि नियमित योगाभ्यास से तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर कम होता है, ब्लड प्रेशर और शुगर नियंत्रित रहते हैं, नींद की गुणवत्ता सुधरती है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। एम्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों ने भी योग के लाभकारी प्रभावों पर अनेक शोध किए हैं। कैंसर, हृदय रोग, अवसाद और मानसिक विकारों में योग को एक पूरक चिकित्सा के रूप में अपनाया जा रहा है। योग भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यह ऋषि परंपरा का उपहार है जिसे भारत ने विश्व को दिया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम हर कार्य को पूर्ण एकाग्रता, समर्पण और आत्मनियंत्रण के साथ करते हैं तो वही योग है। भारत में योग न केवल साधना का माध्यम है बल्कि यह कला, संगीत, नृत्य, आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र और दर्शन में भी समाहित है। संतों, साधकों, गृहस्थों और राजाओं ने भी इसे अपनाया और आत्म शांति प्राप्त की। योग तन, मन और आत्मा के बीच एक सेतु है। यह हमें अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाता है। यह शरीर को स्वस्थ, मन को स्थिर और आत्मा को प्रकाशवान बनाता है। यह आत्मा को संसार की चंचलताओं से हटाकर ईश्वर से जोड़ता है। जिस प्रकार नदी समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खोकर संपूर्णता प्राप्त करती है, उसी प्रकार योग के माध्यम से व्यक्ति भी अपनी सीमितता से ऊपर उठकर असीम चेतना का अनुभव करता है। यही है योग, आत्मा का परमात्मा से मिलन, जीवन का उत्सव और आत्मबोध की दिव्य यात्रा। अतः आइए हम सब इस अमूल्य धरोहर को अपने जीवन में अपनाएं और योग चित्त वृत्ति निरोध की ओर अग्रसर हों। योग को केवल एक अभ्यास नाम

0: बनकर उसे अपनी जीवन शैली बनाएं, तभी हम तन मन और आत्मा के उस त्रिवेणी संगम तक पहुंच पाएंगे जो वास्तव में शांति प्रेम और आनंद का स्रोत है।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे रूपक योग तन मन और आत्मा का संगम और इसके लेखक थे दीपक कुमार सिंह। आइए अब सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ कार्यक्रम
1: पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार।
0: अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त सबीना बानू को इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: श्रोताओं, अभी आप युवाणी कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अथा 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। श्रोताओं, अब सुनते हैं दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग।
1: ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पाराशर।
2: नमस्कार। अब उपलब्धियों की बात होती है तो साल दर साल बात होती है। 12 साल एक लंबा समय होता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। एक के बाद एक कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी, अब अगर हम बात करें कि कितने समय के लिए और कितने दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर रहे, तो वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है। लेकिन सिर्फ बात इन रिकॉर्ड्स की नहीं है, बल्कि बात हो रही है क्या ये नया भारत कुछ विकास लेकर आया, विकसित भारत का नारा जो है वो साकार हुआ। और किसानों के लिए बहुत बात हो रही है, क्या किसान वाकई में खुश हैं, क्योंकि किसानों से सीधे जो जुड़ाव रखते हैं वो खास मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको मामा भी कहते हैं लोग, अब आप पहचान ही गए होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद आपका।
2: अब मैं आपको मामा जी तो नहीं कहूं, लेकिन मैं आपको नेता के तौर पर पहले शुरुआत करती हूं। गर्मी बहुत है, किसान खुश है?
3: किसान खुश रहे इसके लिए सरकार दिन और रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी, उनको बहुत बहुत बधाइयां, उनका अभिनंदन। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। और मैं अभी 2 साल से उनके साथ मंत्री हूं। मेरे जैसे कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला। उनको बहुत बहुत बधाई।
2: अब क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी से ही शुरुआत की है, मैं अपने हाथ में आपकी किताब भी लेकर आई थी, अपनापन। ये किताब आपने नरेंद्र मोदी संग आपके अनुभव, तो 2 साल से तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको देख रहे हैं, आप उनके कैबिनेट का हिस्सा हैं, सरकार में एक अहम पद पर हैं आप, लेकिन आपने जो इस किताब में अपनापन बताया है, आजकल अपनापन ये शब्द ही इस्तेमाल होना ऐसा लगता है खत्म हो गया है। कोई रणनीति की बात करता है, भारी भरकम शब्दों की बात होती है, ये अपनापन क्या जुड़ाव है मोदी जी के साथ?
3: भारतीय संस्कृति का मूल है एक ही चेतना हम सब में है, इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं, आत्मपत सर्वभूतेषु। और यह भाव मैंने सदैव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में और उनके काम में देखा। अपनापन अपने सहयोगियों के लिए, अपनापन अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनापन देश की संपूर्ण जनता के लिए, अपनापन पीड़ित विश्व मानवता की सेवा के लिए। और इसलिए जब कोविड जैसी महामारी आती है तो वैक्सीन केवल भारत की जनता को नहीं लगती, 100 अलग अलग देशों के लोगों को भी लग जाती है। अगर प्राकृतिक आपदा किसी दुनिया के दूसरे देश में आती है तो सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने हाथ आगे बढ़ाता है सहायता और सहयोग के लिए। लेकिन ये अपनापन केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए भी अपनापन। और इसलिए चाहे टाइगर हो चाहे चीता हो, वो सुरक्षित रहे, पुनर्वास हो, इसके प्रयत्न किए जाते हैं। अपनापन पेड़ पौधों के लिए, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जैसा अभियान चलता है, पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की कोशिश होती है। अपनापन नदियों के लिए, और इसलिए गंगा जी से लेके बाकी सब नदियों को बचाने का अभियान चलता है। अपनापन पशु पक्षियों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी, नदियों, पर्वत, पहाड़ों के लिए भी और

0: नक्षत्र तारों के लिए भी चारों तरफ अपनेपन का भाव दिखाई देता है और वो अपनापन का अनुभव साथ काम करते हुए मैंने स्वयं भी किया है और सबके लिए अपनापन देखा, इसलिए किताब का नाम अपनापन। इससे आत्मीय और कोई शब्द नहीं मिला मुझे।
1: आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे पल थे जिसमें कई बार आप भावुक हुए और आपने उनको याद किया नरेंद्र मोदी को, जैसे आपने बताया कि 23 के चुनाव के समय तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे आपको फोन किया और उन्होंने कहा मैं किसी नेता से नहीं अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। ये जो एक कनेक्ट है मोदी जी के साथ, यही वो कनेक्ट है जो जनता के साथ भी महसूस होता है आपको?
0: सबके साथ ही, मैं अकेला ऐसा नहीं हूं, ऐसे अनेकों साथी होंगे। जब ऐसा लगा कि उनको अपनेपन की जरूरत है तो उनसे किसी पद के कारण बात नहीं की, स्नेह प्रेम और आत्मीयता से बात की। और जब कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो मामा का श्राद्ध हो जाएगा और अलग अलग तरह की चीजें चल रही थी, तब उनने फोन करके कहा न चुनाव की बात, न मुख्यमंत्री से बात, अपने शिवराज से बात। यही तो अपनापन है।
1: शिवराज जी, अब क्योंकि हम 12 साल की बात कर रहे हैं, 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस सरकार

0: स्नेह प्रेम और आत्मीयता से बात की। और जब कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो मामा का श्राद्ध हो जाएगा और अलग अलग तरह की चीजें चल रही थी, तब उनने फोन करके कहा न चुनाव की बात, न मुख्यमंत्री से बात, अपने शिवराज से बात। यही तो अपनापन है।
1: शिवराज जी, अब क्योंकि हम 12 साल की बात कर रहे हैं, 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस सरकार की क्या मानते हैं?
0: प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से अपना एक एक क्षण देश की और जनता की सेवा में लगा रहे हैं। और अंतर अगर देखना हो तो हम नहीं कहते, जमाना कहता है। एक जमाना वो था जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और स्थान नहीं मिलता था। भारत को, हमारे प्यारे देश को, एक दिन आज का है जब जहां देखो पूरे सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जाता है। हमारे देश के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। मैं विश्लेषण करूं क्या हुआ है तो घंटों लग जाएंगे, उपलब्धियां कितनी हैं, लेकिन देश आज पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ दुनिया में खड़ा है और कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत।
1: ये तो वैश्विक स्तर की बात हो गई, लेकिन अगर अपने देश में सबसे बड़ी उपलब्धि देखें, जैसे आपको मामा, जो मैंने कहा इसलिए जाना जाता है कि बहनों, माताओं और सबके लिए आपने ऐसी स्कीम, लाडली बहना हो या तमाम स्कीम्स हो, कि पूरे देश ने बाद में उसको फॉलो किया, ऐसी क्या बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की जो एक आपको अगर गिनानी हो?
0: देखिए, एक तो संकट है
1: जिसको इतिहास याद रखेगा,
0: 25 करोड़। देखिए, इतिहास को याद रखने वाली भी चीजें कही है, चाहे धारा 370 हो, अयोध्या में राम मंदिर हो, विकास से विरासत के एक नहीं अनेकों काम हो, नक्सलवाद से देश को मुक्त करना हो। कौन सोचता था कि यह दिन आएगा कि बस्तर की गलियों में आज शिक्षा से लेके रोजगार से लेके शांति की बयार बहेगी? कौन कल्पना करता था? अगर वो गुनाऊंगा तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आम जनता की दृष्टि से अगर देखें, बहनों की बात करें तो 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, इज्जत घर जिनका नाम दिया था जनता ने, 10 करोड़ हमारी ऐसी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सम्मिलित है, जिनमें से 3 करोड़ हमारी दीदियां लखपति दीदी बन गई है, गरीबों के 4 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं। आप किसानों को अगर देखें तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा राशि किसानों के खाते में सीधे डालने का काम हुआ है। मैं अगर गिनाऊंगा तो इतने काम हैं कि समय कम पड़ता है। तो गरीबों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, हमारे नौजवानों के कल्याण के काम सोचने का मामला हो, गरीब, किसान, महिला, नौजवान, सबकी प्रगति और विकास के लिए अनेकों कदम उठे हैं और आप देखेंगे कि जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है।
1: शिवराज जी, आप इतने अनुभवी नेता हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि एक साल के अंदर सरकार गिरने वाली है? एलओपी तो ऐसा ही मानते हैं राहुल गांधी, उनका कहना है एक साल भी नहीं चलेगी।
0: बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।
1: नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
0: ये कौन से ज्ञान चक्षु है उनके पास, दिव्य दृष्टि है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन अभी तो 2029 आने वाला है, 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 देख जीतेंगे, और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे। वो ख्याली पुकाओ पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना देखें।
1: बच्चों से आपका जुड़ाव काफी ज्यादा है, मामा सब कहते हैं। नीट एग्जाम को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद पैदा हुआ है, बात हो रही है कि भाई क्या सरकार सही कर रही है?
0: हम बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई अन्याय नहीं होने देंगे। जैसे ही अनियमितता का पता चला, धर्मेंद्र जी ने तत्काल कदम उठाया, परीक्षा निरस्त की गई, दूसरी परीक्षा की तिथि 12 मई के बाद 15 मई को तत्काल घोषित कर दी गई, फीस लौटाई गई, अगली परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, और संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी बनाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि जिससे कहीं कोई गड़बड़ और दिक्कत ना हो। सीबीआई को मामला दिया गया, अपराधी कई पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जो सारे कदम उठाए जाने थे वो हर कदम उठाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भी लगातार सजग और सचेत हैं, पहले भी पेपर लीक होते थे, इतनी तत्परता से कब कार्रवाई होती थी, लेकिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और एक के बाद एक जरूरी कदम उठाए गए।
1: आपने जो बात कही पहले भी पेपर लीक होते थे, तो ये नैरेटिव की लड़ाई में क्या पीछे रह गए हैं कि ये बात सही से सामने नहीं आ पा रही है कि पहले और अब में ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं?
0: ये है कि पहले कुछ नहीं होता था, अब कठोर कार्रवाई हुई है और जहां भी गैप मिला उसको ठीक करने की, भरने की कोशिश की गई।
1: मतलब बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा?
0: सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे देश का भविष्य है, बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत है, किसी भी कीमत पर उनके साथ ना तो अन्याय ना खिलवाड़, नहीं होने दिया जाएगा।

0: सरकार का संकल्प।
1: क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है? क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है, एक नैरेटिव पूरा सेट करने की कोशिश हो रही
0: कुछ
1: है।
0: तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए और वो कह रहे हैं गरीब गरीब होते जा रहे हैं।
1: नहीं तो हकीकत क्या है, इसका जवाब आप कैसे देंगे
0: हकीकत
1: ऑपोजिशन
0: हकीकत
1: को?
0: तो यही जनता जान, देखिए हकीकत है पश्चिम बंगाल, हकीकत है बिहार, हकीकत है दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह अपवाद इक्का दुक्का छोड़ के भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है, एनडीए शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ सीधा ये है कि जनता सरकार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है।
1: इसमें वोट चोरी का कोई रोल नहीं है?
0: नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वोट चोरी होती तो तमिलनाडु भी जीत जाते।
1: नहीं, लेकिन अब देखिए, अब ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि वोट चोरी है,
0: जो
1: और फिर जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां वहां पर विकसित भारत की बात नहीं हो रही, वहां वहां पर नैरेटिव वही आ जाता है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है या फिर हिंदू मुसलमान। अब
0: देखो,
1: अखिलेश यादव
0: नैरेटिव
1: कह रहे हैं अभी से यही बात हो
0: नैरेटिव
1: रही है।
0: केवल भारत का विकास है और जनता का कल्याण, ये दोनों काम दिन और रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, इसलिए जनता साथ खड़ी है। उपलब्धियां तो मैं कई घंटों आपको गिना सकता हूं।
1: सर, लेकिन नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कि जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र भारत के बाद की नींव रखी, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दोनों के इस अंतर को आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए, कौन कितने समय प्रधानमंत्री रहा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कौन ने कैसा काम किया। एक जमाना था जब भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। PL 480 जैसा गेहूं, लाल गेहूं, जिसको मतलब जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं था, वो हम इंपोर्ट करते थे। उस जमाने में विकास की दृष्टि नहीं थी। कई ऐसे फैसले हुए जिनने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचाया। सिंधु जल समझौता ही अगर हम देखें, आज वो पानी हमारे काम आ रहा है जो बह के पाकिस्तान जाता था। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24 घंटे, मतलब मैं तो कहूंगा कि 24 घंटे में से भी हर क्षण, हर मिनट और हर सेकंड राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। निरंतर काम राष्ट्रहित सर्वोपरि, जनहित सर्वोपरि, इसी भाव से निरंतर काम चल रहा है। और चाहे वो देश के विकास का काम हो, इंफ्रा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो, किसानों के उत्थान का सवाल हो, नौजवानों के बेहतर भविष्य के निर्माण का सवाल हो, या महिला सशक्तिकरण का मामला हो, आप चारों तरफ देखेंगे कि एक के बाद एक अनेकों निर्णय हो रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं और वो जनता की जिंदगी बदल रहे हैं।
1: शिवराज जी, आप तो लगातार ट्रेवल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन आप देश के किसी ना किसी राज्य में होते हैं, अलग अलग जगहों पर। लोग आपसे ये बात करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या एलपीजी के दाम की बात पूछते हैं क्या लोग?
0: आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए, मिडिल ईस्ट के संकट के बाद दूसरे देशों में कितने दाम बढ़े हैं और हमारे यहाँ कितने दाम बढ़े हैं। जनता बहुत समझदार है, हर परिस्थिति जनता के सामने है। मिडिल ईस्ट के संकट को भी जनता अच्छी तरह से पहचानती और समझती है, और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उससे देश के सामने जो बड़े खतरे और संकट हो सकते थे उनसे निपटने में मदद मिली है, और जनता ये सच जानती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का संकट को पहचानना और पहचान के रास्ते निकालना, अभी जो उन्होंने अपील की पिछले दिनों, और अपील की उन कई लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। कोविड से जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निपटे, अगर कई बार मैं सोचता हूं तो मतलब मन कांप जाता है कि मोदी ना होते तो क्या होता। दो दो वैक्सीन 9 महीने के अंतराल में बनकर लग भी गई, केवल हमारे देशवासियों को नहीं लगी, दुनिया के कई देशों के लोगों को भी लगी। और जिस ढंग से जनता कर्फ्यू, थाली थाली, दीपक जलाओ, आप एक के बाद एक कदम के बारे में सोचिए। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेनें चली और खाली जो टैंकर थे वो वायुसेना के हवाई जहाजों से वापस भेजे गए। जिस ढंग के कदम उठे, कोई कल्पना करता है क्या? अब कोई तो कोविड में भी आनंद देखे कि जनता परेशान है और वो आनंद ले। अगर विपक्ष की मानसिकता हो तो मैं उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूं। इसलिए हर संकट में अवसर ढूंढना राजनीति के ये गलत है। हर संकट का मुकाबला भारत ने बहुत मजबूती से किया है। परिस्थितियां बनती है तब कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन देश लगातार आगे बढ़ता है।
1: मैंने पता किया, मुझे पता लगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी, आपने उसी दिन तुरंत अपने ऑफिस में कर्मचारियों को सबको बुलाकर उनको बताया था कि अब क्या करना है, कैसे प्रधानमंत्री की अपील का एक तरीके से पालन करना है। आपने भी कुछ टिप्स अपने ऑफिस में दे दिए थे लोगों को?
0: तत्काल ही देखिए, मैं तो उनकी हर भाषण को ध्यान से सुनता हूँ। पहली बार जब मैं मंत्री बना उनके नेतृत्व में, और 15 अगस्त

0: तो स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैंने तुरंत वहां से उतरते ही लाल किले की प्राचीर से अपने दोनों सचिवों को फोन किया, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, और कहा कि कल सारे कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे होंगे, बाकी सब वर्चुअल जुड़ेंगे। और हम सब ने खड़े होकर संकल्प लिया राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कि हम भी 3 गुना ताकत से काम करेंगे, प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हम पीछे कैसे रहें। उन्होंने इस बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं, जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए। हमने तुरंत नियम और प्रक्रियाओं के सरलीकरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा कि जनता को कोई तकलीफ ना हो किसी भी कीमत पर। जो अभी उनकी अपील आई उस पर तुरंत हमने अमल करते हुए कैसे हम कार पूलिंग कर सकते हैं,
1: अच्छा,
0: कैसे विदेश यात्रा अनावश्यक बिल्कुल नहीं करनी है, डीजल पेट्रोल कैसे बच सकता है, उसके एक एक कदम हमने उठाए जिनमें मैं भी शामिल हूँ और मिलकर उन पर अमल करने की कोशिश की।
1: तो आप भी कार पूल करते हैं अगर बाहर जाते हैं तो?
0: हम बैठक में जाते हैं कैबिनेट की और दूसरे मंत्री जा रहे हैं तो हम साथ बैठ के जाते हैं, तो काय को हम दूसरी कार ले जाएं। जब पिछली बार बैठक में हम 3 मंत्री एक साथ गए थे कार।
1: अच्छा, देखिए ये सब खबरें बाहर नहीं आती है, ये पता ही नहीं चलता किसी को,
0: और इसलिए कोशिश करते हैं कि यथासंभव जनता के काम को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम जो भी बचत कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें।
1: शिवराज जी, AI नैनो की भी बहुत बात हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा विजन बताइए कि क्या विजन है और इससे किसानों को किस तरीके से, मतलब अगर कुछ दिक्कत है तो सामना कैसे करें और फायदे क्या पहुंच सकते हैं?
0: देखिए, हमको एग्रीकल्चर के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो 3 बड़े लक्ष्य हमारे, एक, देश की खाद्य सुरक्षा हमें सुनिश्चित करना है, दूसरा, पौष्टिक आहार जनता को उपलब्ध कराना है, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण इन दोनों से भी किसान की आजीविका और रोजगार सुनिश्चित करना है। और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और इसलिए AI का उपयोग भी हम कैसे हम कर सकते हैं, मैकेनाइजेशन का काम कैसे करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन की लागत घटा सकते हैं, इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। एक ने अनेकों प्रयोग हो रहे हैं, जैसे AI के माध्यम से ही अगर आप बात करेंगे,
1: जो अल नैनो की हम बात कर रहे हैं,
0: अलनीनो की भी हम बात करें, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। हमने एक भारत विस्तार, हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर कोई भी किसान पूछता है अगर कोई सवाल कि मेरी फसल की पत्ती पीली हो रही है, ऐसे लक्षण है, अब मैं क्या करूं, तो तत्काल उसको जवाब मिलता है कि फलानी बीमारी हो सकती है, आप ये दवाई डालिए। ये AI का इस्तेमाल है। मोबाइल लेके आप खेत में खड़े हो जाएं तो ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व है और हमको कितनी खाद डालनी चाहिए, और नहीं तो बिना मतलब के जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी डाले जा रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता है, उत्पादन में भी कोई लाभ नहीं होता। तो AI के ऐसे अनेकों उपयोग है जो निरंतर कर रहे हैं। अभी अल नीनो का संकट दुनिया पे बरकरार है, केवल भारत नहीं, दुनिया के मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि अल नीनो के कारण यहाँ बारिश कम हो सकती है। हमने वो 197 डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की है जहाँ कम बारिश होने की संभावना है, और हमने AI के माध्यम से उन जिलों को न केवल पहचाना है बल्कि उनका कंटेंजेंसी प्लान बना रहे हैं कि वहां अगर ऐसी परिस्थिति बनी है, संभावित है, क्योंकि मौसम के बारे में 100% कोई नहीं कह सकता, संभावित है, तो उनका कंटेंजेंसी प्लान हमने बनाया उन जिलों में कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन से बीज इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी किस्म बेहतर रहेगी। अगर बारिश में तो स्पेल में लंबा गैप हो गया, एक दिन बारिश हुई फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद बारिश होती है, तब हमको क्या करना चाहिए, तो सारी चीजों का आकलन करके और उसकी AI की मदद से हम उससे कैसे निपटेंगे, इसका प्लान भी हम तैयार कर रहे हैं। मध्य भारत के कई इलाकों में कम बारिश की संभावना है तो उनमें हम क्या करेंगे, उसका प्लान हमने तैयार किया है। हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का सहारा हम ले रहे हैं। हर सप्ताह मैं मॉनिटरिंग करता हूं, रोज हमारे अफसर मॉनिटरिंग करते हैं कि आज मानसून कहां पहुंचा, कितना पहुंचेगा, किस गति से बढ़ेगा, कहां कम संभावना है, कहां ज्यादा संभावना है, तो सब चीजों का आकलन करके हम फैसले कर रहे हैं।
1: आपको लगता है शिवराज जी कि बंगाल के इलेक्शन ने ये तुष्टीकरण और ये वोट बैंक की राजनीति को काफी हद तक खत्म किया है?
0: देखिए, सीधा तुष्टीकरण अब ये देश स्वीकार नहीं करेगा, वोट बैंक की राजनीति ये देश स्वीकार नहीं करेगा। आज गर्व के साथ हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक सुपर ह्यूमन है, भारत के लिए भगवान का वरदान है, उनके नेतृत्व में जो हम कर रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, घुसपैठ जैसे मामले हो, प्रगति और विकास और जनता का कल्याण तो है ही, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय सर्वोपरि मानते हुए, जो विश्व हित की भी सोचता हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है।
1: शिवराज जी, बहुत बेबाक तरीके से आपने बात की, एक ऐसी बात नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि हम 12 सालों पर बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आप हमेशा उनसे

0: लिखते हैं और उनकी बात को याद रखते हैं? क्या वो एक स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, या सॉफ्ट हार्टेड हैं, क्या हैं?
1: केवल एक ही घटना मैं सुनाऊंगा। एक बार मैंने उनके सामने, मैं और वो दोनों थे, उनके कामों की प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छा हुआ, देश उसको बहुत पसंद करता और हमारे मन में भी आपके प्रति श्रद्धा का इसलिए भाव है। तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, मैं प्रशंसा से नहीं, मैं काम से प्रसन्न होता हूं। जो काम करेगा उसको कंधों पर बैठा के मैं नाच सकता हूं, लेकिन प्रशंसा मैं नहीं सुनता, केवल काम पसंद करता हूं। और वो चीज मुझे हमेशा ध्यान में रहती है, काम करो, काम करो, काम करो, चलते रहो, चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती, अपने देश के लिए काम करो।

0: करते रहो, अपनी जनता के लिए काम करते रहो, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।
1: बहुत आपने एक हम सबको भी एक सीख दी चरैवेति चरैवेति के इस मंत्र के साथ, और यही मंत्र होना

0: ना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ इस खास बातचीत में।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय में पाराशर। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। शर्मा की विशेष बातचीत।
0: छब्बीस मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। उस समय उन्होंने सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि एक नए भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दी और तब से लेकर के पिछले 12 सालों में चाहे विकास की बात करें या सुशासन की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें या फिर गुलामी की मानसिकता से

भारत की बात करें, लगातार मोदी सरकार पूरे देश में काम कर रही है। और गुलामी की मानसिकता की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे भारत की संस्कृति है

0: हमारे इस पॉडकास्ट में
1: धन्यवाद।
0: भारत किस तरीके से जो उसकी संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो उसका पुनः जागरण हो रहा है। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री
1: जिन कालखंडों में इस अटूट सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की गई या जो इस सभ्यता के स्मारक थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई, एक ऐसे पृष्ठभूमि में रखने के लिए जिससे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारी ज्ञान परंपराएं, उनको हम पुनः स्थापित कर पाए और हमारे जो नागरिक हैं, खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनके समक्ष ला पाए, उसके लिए बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए। बहुत सारे जो हमने काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जो कॉलोनियल समय में भारत की सेक्रेटेरिएट थी और जहां से भारत के राज्य का संचालन अंग्रेज करते थे, उस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नया म्यूजियम बनाने की घोषणा की, जिसपे हम काम कर रहे हैं, वो भी म्यूजियम युगे युगीन भारत के नाम से। भारत की जो ज्ञान परंपरा

0: अगर आप लॉर्ड मैकले ने जब भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनाई कॉलोनियल के समय में, उन्होंने कहा कि यूरोप की किसी भी लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ की किताबें हैं वो भारत की पूरी ज्ञान परंपरा से ज्यादा बेहतर है। उसको जो वो भावना भारत में लाने की कोशिश की गई कॉलोनियल राज द्वारा, उसको मिटाने के लिए और भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा है उसको पूरे विश्व के सामने लाने के लिए और भारत के नागरिकों के सामने लाने के लिए ज्ञान भारतम का काम प्रारंभ हुआ है, जिसमें जो हमारी हस्तलिखित मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारी पांडुलिपियां हैं, जो विभिन्न विषयों पे हैं, खासकर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हीलिंग सिस्टम्स हो, मेडिसिन हो, जो चिकित्सा के साथ साथ जो सर्जरी की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर जो हमारा काम था, उस सब को अब हम पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, एक नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे, हमने उनको पुनः निर्मित करते रहे, बार बार तोड़ने तोड़ते रहे और हम निर्मित करते रहे, इसको भी भारत की याद में दोबारा भारत के नागरिकों के समक्ष लाने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम मना रहे हैं।
1: सर, आपने युवा पीढ़ी की बात कही। जहाँ किसी भी देश का, हम कहते भी हैं कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसका जो आधार होते हैं उस देश के युवा होते हैं। और जैसा कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति खत्म कर दीजिए, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपने भी जिक्र करा शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है। और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि जब पूरा विश्व समझने की कोशिश कर रहा था कि सभ्यता होती क्या है, उस वक्त हम सभ्यता के धरातल पर दौड़ रहे थे और उसको भी संस्कृति मंत्रालय अब आगे लेके जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे?
0: भारत की ज्ञान परंपरा का एक बड़ा सेंटर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो प्राचीनतम, जो विश्व में अकेला ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके साथ पश्चिम भारत में तक्षशिला था। नालंदा की जो परंपरा थी उसको इसी कालखंड में, जब भारत पे हमारे पे अतिक्रमण हुए, हमारे पे बहुत सारे आक्रमण हुए, उस समय नालंदा पे भी आक्रमण हुआ, उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब नालंदा की जो ज्ञान परंपरा है उसका पूरा रिवाइवल हुआ है। वहां पे नालंदा विहार विश्वविद्यालय चल रहा है, जिसमें जो बुद्धिस्ट और पाली लैंग्वेज और पोटी लैंग्वेज का जो लर्निंग है वो होता है, इतिहास, संस्कृत, और साथ में जो सांस्कृतिक धरोहर नालंदा की थी, जो ज्ञान परंपराएं थी उसके ऊपर वहां पे शिक्षण का कार्य होता है, उस पर रिसर्च का कार्य होता है। उसी तरह जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को साथ जोड़ के एक बहुत बड़ा कार्य इस सरकार द्वारा इस समय में किया गया है।
1: आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, या जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, मतलब आज की जेंजी की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा जानते हैं, रादर हम अपनी बात करें अपने समय में हमें नहीं पता था, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है, या फिर जो स्थानों के नाम राष्ट्रीय सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आएगा और एक जो सभ्यता है वो पुनः जागृत होगी?
0: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब कॉलोनियल शासन था तो अंग्रेजों के जो उस समय के प्रशासक थे या उस समय के गवर्नर जनरल थे या वाइस रॉय थे, उनके नाम पे बहुत सारे भारतीय स्थानों के नाम रखे गए, जैसे पोर्ट ब्लेयर था जो अब श्री विजयपुरम है, जो वहां पे द्वीप थे वो अब नेताजी द्वीप के, नेताजी के नाम से द्वीप हुआ, जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनमें कॉलोनियल लिगेसी थी, उनको परिवर्तन करके हमने अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पुनर्जागृत किया है। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्थल है या जो पुरातत्व स्थल है उनको हम अगर विकसित करते हैं और उनके ऊपर हम विजिटर एमिनिटीज अच्छे से डेवलप करते हैं, और खासकर वहां के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर है, और वहां पे अगर हम ऑडियो विजुअल गाइड के साथ ARVR एक्सपीरियंस क्रिएट करके हम पूरा नैरेटिव जो वहां पे जो हमारे यूथ है, हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं वो जाते हैं, तब उनको वो समझ में आएगा कि वास्तव में इतिहास में इन स्थानों का क्या महत्व था और क्या हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की ऊंचाई थी प्राचीन समय में।

0: लोथल में एक बहुत बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम स्थापित हो रहा है। ये लोथल 5,000 वर्ष पुरानी साइट है। 5,000 वर्ष पहले यूरोप अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था, परंतु भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी और उस सभ्यता का संपर्क था विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ, और डॉकयार्ड था, पूरा मैरीटाइम सिस्टम था, वेयर हाउसेस थे, ट्रेड का सिस्टम था, सील्स थी, करेंसी थी। तो एक पूरी विकसित सभ्यता थी जिसको उजागर अगर हम अच्छे से प्रॉपरली इन साइट्स को डेवलप करके करते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी को उसका महत्व और उसकी ज्ञान की जो जो जो ज्ञान की प्राप्ति होगी उसे ना केवल नेशनल प्राइड डेवलप होगा बल्कि जो एक पूरा माइंडसेट है वो भारत के नागरिकों का बदलेगा।
1: एक सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, खासकर हमारी जेंजीज के लिए, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं सर। आपने वो दौर भी देखा जब ये गुलामी की जो मानसिकता थी वो पूरी तरीके से छाई हुई थी, और अपनी ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति, अपने ही इतिहास से हम बच्चे थे। और आज जब आप इस दौर में हैं, संस्कृति मंत्रालय के सचिव बनकर जब आप विदेशों में जाते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं, तो और खासकर जब भारत की वो पुरानी धरोहर है, वो मूर्तियां, वो अमूल्य चीजें आप जब भारत वापस लेकर के आते हैं, तो कैसा महसूस होता है? क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
0: देखिए, एक मिक्स्ड भावना होती है। जब विदेश में जाते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि भारत की धरोहरें उन्होंने अपने म्यूजियम्स में रखी हुई हैं और वो प्राउडली उनको डिस्प्ले करते हैं, तो मन में ये भी आता है कि ये धरोहर भारत की है और भारत के पास वापस आनी चाहिए। पर जब हमें कुछ हिस्सा धरोहर का हमें वापस मिलता है और हम वापस भारत में लेके आते हैं तो एक बहुत गर्व की भावना भी होती है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने बहुत निश्चय करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। बट ये एक शुरुआत है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, जिसमें ना केवल भारत का कल्चर मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय काम करता है बल्कि भारत के सभी मिशंस, सारे एम्बेसीज, सारे हाई कमीशंस, हमारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पूरे विश्व भर में इस कैंपेन का हिस्सा बन के इस काम को कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो हम करते जा रहे हैं और जितनी हमें सफलता प्राप्त हो रही है उससे पूरे भारतवासियों को उस पर गर्व होगा। पर मैं ये भी मानता हूं कि और भी काम होना है, उस काम के लिए हमें और शक्ति हमारा देश देगा, हमारे नागरिक देंगे। और मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो भारत की रिस्पेक्ट और भारत की वॉइस जो आज सुनी जा रही है विश्व में, वो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूर्व का दौर भी देखा है, मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में पूर्व में भी जाता रहा हूँ और अब भी मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में जाता हूँ, पर आज जो हमारी वॉइस है और जो जिस तरह से भारत को बहुत गंभीरता से सुना जाता है और जहां भारत कोई स्टैंड लेता है तो हमेशा हमारे को साथी मिलते हैं, क्योंकि हमारी बात नॉर्मली हम वैसी बात करते हैं जो विश्व के कल्याण की हो, जो विश्व को साथ लेके चलने की हो, और जब हम वो बात करते हैं तो हमारे को साथ भी मिलता है और हमें सफलता भी मिलती है।
1: सर, एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और खासकर हमारे जेंजी दर्शकों से, जबकि भारत में महिलाओं का वही सम्मान जो उन्हें दिया जाता था, महिलाओं के लिए सामने आ रहा है वही संस्कृति, आज हमारी दीपावली का त्योहार पूरा विश्व मनाने जा रहा है, तमाम बदलाव आपने लेकर के आए केंद्र सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, बहुत सारे प्रयास हुए थे जिनको उस समय सफलता नहीं मिली। जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक सोसाइटी बनी थी, इट वॉज उसको कहा गया था ग्रेटर इंडिया सोसाइटी। उसका मतलब ये था, जो करीब 1926 में कोलकाता में बनी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भारत से विश्व को गया उसको हम विश्व को बताएं। तो शुरुआत हुई, अब हम उसको बहुत अच्छे से विश्व को बता पा रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने गर्व से अपना सीना ताना सिर ऊंचा किया और अपनी बात पूरे विश्व में कहना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज जब हम कह रहे हैं, पूरा विश्व उसको सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है और इसको हम सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं और इसको रिकग्निशन के लिए, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि हम कहें और शुरू में माना जाए उसका इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो, उसकी हम इंस्क्रिप्शन भी यूनेस्को में कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो पूरा जो जो प्रक्रिया है, पूरा सेटअप है, वो ऐसा है कि ना केवल हम किसी चीज को एस्टैब्लिश करें बल्कि उसको एस्टैब्लिश करके हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि पूरा विश्व उसको रिकग्नाइज करे।

0: और रिकग्नाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करे और फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में विश्व में मान्यता प्राप्त करे, उस और हम बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमैटिकली हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी।
1: तो हम बात कर रहे थे अब संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।

श्रोताओं, अभी आप दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों में आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं रोजगार समाचार, तत्पश्चात गौरव गान। सबसे पहले सुनते हैं रोजगार समाचार। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में प्रतिनियुक्ति के आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा उप पुलिस अधीक्षक के पदों हेतु नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं, जो अखिल भारतीय आधार पर होगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वेतन मैट्रिक लेवल 11 में पूर्ण संशोधन वेतन बैंड 3 के तहत 2 पद और पुलिस अधीक्षक वेतन मैट्रिक लेवल 10 में पूर्व संशोधन वेतन बैंड 3 के अंतर्गत 3 पद रखा गया है। ये सभी पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगा। रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। मात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि तथा आवेदन पत्र राष्ट्रीय जांच अभिकरण NIA की वेबसाइट www.nia.gov.in पर उपलब्ध है। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार बाद में अपना आवेदन वापस नहीं ले सकेंगे। योग्य अधिकारियों के नामांकन दस्तावेजों सहित हार्ड कॉपी इस पते पर पुलिस अधीक्षक www.nia.gov.in पर उपलब्ध है। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार बाद में अपना आवेदन वापस नहीं ले सकेंगे। योग्य अधिकारियों के नामांकन दस्तावेजों सहित हार्ड कॉपी इस पते पर पुलिस अधीक्षक

0: आवेदन अथवा आवश्यक दस्तावेजों के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए 2 मई का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देखा जा सकता है। ये थे रोजगार समाचार।
1: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply. Nexa.
2: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं। और माइलेज भी बढ़िया है, 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में। बाय ऑफर अप टू 80,000।
3: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।
0: श्रोताओं, आइए सुनते हैं संवेद सुरों में गौरव गान।

0: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply. Nexa.
1: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ. इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है. सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं और माइलेज भी बढ़िया है. 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर केजी CNG में. बाय ऑफर्स अप टू 80,000.
2: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है. शर्तें लागू.

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब समाचारों व अन्य कार्यक्रमों के लिए हम आपको ले चल रहे हैं दिल्ली केंद्र की ओर। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक

0: दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इसे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सिटबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
5: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता

0: कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
1: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
3: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
2: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
4: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है, जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
2: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के

0: के नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर एनडीए कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं एनडीए अधिवेशन में प्रधानमंत्री के संबोधन के मुख्य बिंदु, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा। आशुतोष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: तो आशुतोष जी, जैसा कि कल हमने सुना प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन था, और जिसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पे बात की, देश के अंदर जो हमारे सामने समस्याएं हैं, जो विकास के मुख्य आयाम हैं, और वैदेशिक संदर्भ में भारत की क्या मुख्य भूमिका है, इन तमाम बिंदुओं पर प्रधानमंत्री ने चर्चा की। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से पिछले 12 साल में सरकार ने काम किया है और देश को किस तरह से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की, ढांचागत विकास की उन्होंने बात की, डिजिटल सेवाओं की बात की, वेलफेयर स्कीम्स की बात की। आप इसके बारे में और क्या जोड़ना चाहेंगे?
2: पिछले 12 साल जो काम हुए हैं राजग काल में, एनडीए के काल में, उसकी जो बात की वो तो की कि उपलब्धियां गिनाई। ये उपलब्धियां मुझे लगता है कि दो स्तर पर दिखी। एक तो कि जो जमीन पे जो चीजें आपको बदलती हुई दिख रही हैं वो, कि जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, और दूसरा है सोच के स्तर पर बदलो कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। जो जो पहले की सरकारों में 60 सालों में जिस तरफ हमारा, जिस सेक्टर पे फोकस नहीं होना चाहिए था और नहीं गया, उसको कैसे सुधारना है, वो एक लेवल वो था कि कैसे बदलना है। और जो तीसरा जो एक लेवल था जो मुझे दिखा, और प्रधानमंत्री ने इसके बारे में बात भी की, वो ये है कि भारत की जो 140 करोड़ जनता है उसके मन और दिमाग में कुछ चीजें असंभव सी थी जो कि बैठी हुई थी, कि ये चीजें असंभव है, बाकी चीजें तो हम करेंगे। उस असंभव को पार करना, जिसमें कि उन्होंने फिर वो 370 और 3 तलाक, जो इस तरीके की बात की जो समाज से भी जुड़ते थे, देश की सुरक्षा से भी जुड़ने वाले इशू थे, और जो आम जन की जनभावना से जुड़े हुए जो मुद्दे थे वो। तो ये 3 तरीके के बदलाव जो पिछले 12 साल में हुए, मुझे लगा कि प्रधानमंत्री ने इससे बहुत खुल के बात की।
1: आशुतोष जी, अगर हम खासतौर से बात करें आर्थिक प्रगति की, हम सभी देखते हैं कि किस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, निवेश की बात करें, डिजिटल पेमेंट की बात करें, और खासतौर से पूरी दुनिया में भारत ने अपनी एक जगह बनाई है, और न सिर्फ एक जगह बनाई है, हमने लगातार कोशिश की है इस सरकार के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कि हम बाकी दुनिया से एक कदम आगे चलें। तो आइए सुनते हैं इस बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
3: आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, इसलिए भारत को अब ग्लोबल पैरामीटर्स, ग्लोबल कॉम्पिटिशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना है। दुनिया भारत से सॉल्यूशन चाहती है, दुनिया भारत में वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद पार्टनर देख रही है, और हमें दुनिया की इन अपेक्षाओं पर खरा उतरकर दिखाना, हमें ये समय गंवाना नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ, यही समय है, सही समय है। हमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में खुद को श्रेष्ठ रखना है, हमें सिर्फ दुनिया जैसा नहीं करना, हमें दुनिया से एक कदम आगे रहना है।
1: तो आशुतोष, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और अगर हम देखें कि किस तरह से जो देश का विकास हुआ है,

0: और जो 2047 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, चूंकि 100 साल हमारे देश की स्वतंत्रता के हो जाएंगे, और उसमें आर्थिक विकास से लेके जो टेक्नोलॉजी का विकास है, जो सोशल इंक्लूजन की बात है, सामाजिक समावेश की बात है, और एक अच्छे प्रशासन और गुड गवर्नेंस की बात है, इस बारे में आप आशुतोष जी और क्या जानकारी देना चाहेंगे?
1: आज देश को किस चीज की जरूरत है? अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें, जो बात हो रही है ना कि पश्चिम एशिया का संकट आया और पूरे विश्व पे इस संकट का असर दिख रहा है, यहाँ पर विपक्ष में बैठे लोग कुछ ज्यादा उसे तूल दे रहे हैं, ऐसा लगता हो कि सिर्फ इंडिया का वो एक इशू है, लेकिन फिर भी जो समस्या अभी आपको दिख रही है ये और कम दिखती अगर कुछ कदम पहले उठाए गए होते, जिसका कि जिक्र अभी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया था, और उन्होंने कहा था कि भाई जो सप्लाई चेन में जो इंडिया पर कई बार दिखता है कि हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, ये कोविड के टाइम में भी ये चीजें दिखी थी और अभी भी चीजें दिख रही है, वहां कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन में मुख्य भूमिका में इंडिया को आना है। एक टाइम आप याद कीजिए कि कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जहां हम पहले से मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जैसे कि दवाइयां, और ये 80-90 के आसपास की मैं बात बता रहा हूं, और फिर धीरे धीरे उस समय कुछ इस तरीके से निर्णय लिए गए कि भाई हम मार्केट इकोनॉमी में किस तरीके से घुस जाएं, और हम वहां मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो उस समय में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार खड़ा करना था वो नहीं किया गया, अब शुरुआत हो रही है इसकी। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने बहुत लंबे तरीके से किया और मुझे वो चीजें बहुत सही लगी आज के परिप्रेक्ष्य में कि क्यों नहीं भारत हर मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है, जिसकी बात उन्होंने की। ये आत्मनिर्भरता ही जो है वही कड़ी है और वही आप समझिए सबसे बड़ी कुंजी है, जिसमें कि आप वित्तीय रूप से बहुत संबल, जो बात हो रही है ना बार बार विकसित भारत बनने की,
0: जी,
1: विकसित भारत ऐसा नहीं है कि एक शब्द में जुड़ के कहीं खत्म हो जाए, कई लेवल पे जो स्टेप्स लेने हैं, और इसलिए प्रधानमंत्री ने ये बात की कि भाई ये ग्लोबल सप्लाई चेन बनना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनना है। आज से 8-9 साल पहले तक आप याद कीजिए तो यहाँ आपके हाथ में, हमारे हाथ में जो भी फोन है वो बाहर से ही आ रहे होंगे कहीं ना कहीं से। अब स्थिति बदली हुई है कि आज अमेरिका वहां के जो यूजर है उसमें से एक फोन मेड इन इंडिया हो रहा है। ये जो बदलते हैं माहौल, उसकी बात उन्होंने की कि हमें किस तरीके से आर्थिक पावर के रूप में उभरना ही पड़ेगा, यही सबसे बड़ी कुंजी है। उसी के साथ समाज का भी ग्रोथ होगा। भारत जैसे देश में जहां इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है उसमें वेलफेयर स्टेट का जो एक बहुत बड़ा बोझ होता है, आप जान रहे हैं कि आज के दिन हम लोग करीब करीब 4-4.5 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी में देते हैं, आखिर कहां से कर पाएंगे अगर जब तक आप एक आर्थिक ताकत के रूप में नहीं उभरेंगे, और आर्थिक ताकत के रूप में उभरने के लिए इसकी भी जरूरत है, और साथ ही साथ सभी राज्यों को भी लेना चाहेंगे जो एक हेल्दी कंपटीशन की बात है।
0: जी जी,
1: कि भाई ये हेल्दी कंपटीशन सिर्फ राज्य और राज्य में ना हो, ये हेल्दी कंपटीशन गांव से शुरू हो सकता है कि एक गांव दूसरे से कॉम्पीट कर रहा हो कि हम अपने गाँव को कैसे ज्यादा बेहतर बना पाए, एक शहर दूसरे से कॉम्पीट कर रहा हो कि हम कहाँ पर ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाए, और उन्होंने कहा कि राज्यों को तो ये कम्पीट करना चाहिए कि भाई आने वाले टाइम में हु विल बी द फर्स्ट स्टेट जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का स्टेट होगा।
0: तो आशुतोष जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाए और प्रधानमंत्री ने सहभागिता की बात भी की, क्योंकि उनका ये मानना है जैसा कि आप भी अभी जिक्र कर रहे थे कि सारी जनता मिलके और सारे राज्य मिलके ही विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक जन विश्वास की जो बात है, जन भागीदारी की बात है, इस पर प्रधानमंत्री ने काफी जोर दिया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
2: देशवासियों की सहभागिता की हमारी बहुत बड़ी शक्ति, ये 12 वर्ष सरकार और समाज की सहभागिता का उत्सव मनाने वाले रहे हैं। बीते 12 वर्षों में मैंने जो भी सहयोग देश से मांगा देशवासियों ने दिल खोल करके साथ दिया। मैंने स्वच्छता का आग्रह किया तो पूरा देश निकल पड़ा। मैंने देश से डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए आह्वान किया तो भारत रियल टाइम ट्रांजेक्शन में दुनिया में सबसे आगे निकल गया। मैंने कोरोना महामारी के दौरान एकजुटता का, संयम का आग्रह किया, देश ने एकजुट होकर उस महामारी का सामना किया। जनता ने कभी हमें निराश नहीं किया। आने वाले समय में भी इसी जन विश्वास और जन भागीदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है।
0: आशुतोष जी, जैसा कि अभी हमने सुना, प्रधानमंत्री ने इसके अलावा हाउसिंग की बात की, वित्तीय समावेशन की बात की, सफाई का भी जिक्र किया, स्वास्थ्य का जिक्र किया। खास तौर से जिस तरह से गरीबी उन्मूलन की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़े हैं और काफी लोगों को गरीब

0: गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की कोशिश की है, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को और क्या जानकारी देना चाहेंगे?
1: न सिर्फ गरीबी से जो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, और साथ में उन्होंने कहा कि हमें इसका विशेष प्रयास करना चाहिए, एक साथ मिल करके प्रयास करना चाहिए कि ये फिर से उस गरीबी के दलदल में ना जाए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही होती है जब आप इस तरीके की योजनाओं पे काम करते हैं, स्लिपेज की बात, कि आपने कुछ चीजें ठीक की और वो फिर से धीरे धीरे वहीं चला जाए, तो वो प्रयास वहां पर विफल होता है। और देखिए, ये गरीबी की जब बात करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा कारक हुआ करता था वो है बीमारी, कि एक बार कोई घर में एक बीमार हो गया किसी गरीब के घर, और वो फिर से लोन और इसके दुष्चक्र में फंसता हो वहीं जाता था। बीमारी को लेकर के सरकार ने पहले ही एक कदम उठाया, आज से 5-6 साल पहले जब आयुष्मान योजना की बात हुई थी, उससे बहुत सारी चीजें सुधरी थी। और ये जो 25 करोड़ का आंकड़ा अभी आ रहा है कि इतने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, वो नियो मिडिल क्लास में और थोड़ा सा उससे नीचे में प्रवेश कर चुके हैं, अब उनकी आकांक्षाएं और बढ़ रही हैं। ये आकांक्षा बढ़ना ही तो है विकसित भारत के लिए जरूरी है।
0: जी जी, और प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि किस तरह से कुछ समय पहले हमारी अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब हम बहुत ही त्वरित गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था की स्थिति में पहुंच गए हैं। और जैसा आपने भी इसका जिक्र किया कि किस तरह से 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से निकाला है, और प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि किस तरह से एक ऐसा भारत बनाया जाए जहां गरीबों के सपने भी पूरे हो पाएं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: जैसा कि हमने सुना, आशुतोष जी, जो प्रधानमंत्री ने कहा, वो एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं कि जब 100 साल पूरे हों देश के, तो एक नए तरह का भारत हो जो बहुत विकसित हो और विकसित श्रेणी और विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो पाए। आप इस बारे में क्या और कुछ जानकारी देना चाहेंगे?
1: ये जो विकसित भारत की कल्पना की गई, और उसी समय ये भी है कि विकसित भारत क्या होगा। विकसित भारत का अर्थ ये है कि एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में भारत खड़ा होगा, एक आत्मनिर्भर देश के रूप में भारत खड़ा होगा। भारत की तुलना आप किसी छोटे कंट्री से नहीं कर सकते। बहुत सारे विकसित देश ऐसे हैं जहां की जनसंख्या आप देख लें तो वो पूरे के पूरे भारत में समाएंगे। तो यहाँ की सोच अलग है और उसी तरीके से इसका ग्रोथ किया जा रहा है। मुझे लगता है जो उन्होंने बात कही दिशा सही है
0: जी,
1: थोड़ी गति की बात है जो उन्होंने कही, जहां हमें गति और बढ़ानी है और जिसमें सबके प्रयास की बात की उन्होंने, ये दोनों चीजें होंगी तो मुझे लगता है दिशा और गति दोनों मिलकर जो है सो इच्छित परिणाम के देंगे।
0: आशुतोष जी, एक और महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही कि किस तरह से सरकार ने विकास के लिए जो भी जरूरी फैसले हैं वो समय पे लिए, चूंकि राजनीतिक स्थायित्व तो है और सरकार के पास ये इच्छा शक्ति है कि वो देश को विकास की ओर आगे ले जाना चाहती है। तो सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
2: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, CAA का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही, और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
0: आशुतोष जी, आप और क्या इसमें जोड़ना चाहेंगे? प्रधानमंत्री ने जो बात की कि देश हित में जो भी फैसला जरूरी होगा वो ये सरकार करेगी, जिससे कि देश विकास की दिशा में आगे बढ़ पाए।
1: मैं आपको एक तो एग्जांपल दूंगा
0: जी,
1: 370 की बात इन्होंने की, और आपको याद होगा कि जब 370 हटाया गया था तो उस समय में किस तरीके की बातें कही जा रही थी। मैं अभी अभी कश्मीर से लौट के आया, बारामूला और शोपियां जैसे जिले, आप वहां भी खुलेआम घूम सकते हैं एक सामान्य नागरिक की तरीके से, वो भी कश्मीरी नहीं, आप बाहर से जाकर के घूम सकते हैं और सुरक्षित घूम सकते हैं, लोग खुश हैं। उसी तरीके से जो 3 तलाक वाली जो बात कही, सरकार का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि वो आपको नौकरी देते हैं, सरकार का काम ये भी होता है कि वो इस तरीके के प्रयास करे कि समाज में भी बदलाव आए।
0: जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
3: अभी आप

सुन रहे थे भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर एनडीए कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइज।

मीडियम व्यू 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम संदेशे आते हैं।

श्रोताओं, आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम संदेशे आते हैं में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, आप भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए। हमारा नंबर है 9474234000। जी हाँ श्रोताओं, नंबर एक बार फिर से सुनिए, 9474234000। इस नंबर पर हमें अपना नाम, पता, फिल्म का नाम और गीत के बोल लिख भेजें ताकि हम आपके मन पसंदीदा गीत आप तक पहुंचा सकें। श्रोता, कार्यक्रम में पहला संदेश आया है हमें गाजीपुर उत्तर प्रदेश से साक्षी, वैष्णवी और प्रतीक का। ये सुनना चाहते हैं सिलसिला फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुनते हैं सीता और गीता फिल्म का ये गीत, जिसे सुनना चाहते हैं दीपू, निधि और प्रिंस, बलिया उत्तर प्रदेश से।

दोस्तों अगला संदेश हमें भेजा है अनमोल बेबी आयांश दीपक और वंश ने सुल्तानपुर दिल्ली से। इन्होंने पसंद किया है द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का ये गीत।

दोस्तों अब सुनते हैं ज़माने को दिखाना है फिल्म का ये गीत, जिसे पसंद किया है अनीश और नीरज ने मंजौली असम से।

ये संदेश हमें आया है रामकृष्णपुर लिटिल अंडमान से, कीर्ति, जया, कल्पना और सीमा का। ये सुनना चाहते हैं राम तेरी गंगा मैली हो गई फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम संदेशे आती हैं सुन रहे थे। अब सुनिए मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार जन सेवाओं को परसों तक के मौसम संबंधी पूर्व अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने तथा हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलने की आशंका बताई गई है। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में यह बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण अंडमान सागर और उसके आसपास के क्षेत्रों में हवा की गति 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जो कि बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे भी हो सकती है। मछुआरों को यह सलाह दी जाती है कि वे 14 जून तक समुद्र में ना जाएं। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हमारी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज़ में विविध भारती एफएम पर कल सुबह 6:00 हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की 22वीं तिथि तदनुसार 12 जून सन 2026। इस समय सवेरे के 5:28:30 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है।